मुख्यमंत्री अजय टमटा ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति क्रिस्टो डोलाइट मुंबई का दौरा कर चुके हैं। उनके साथ विदेश मंत्री डॉक्टर कॉन्स्टेंटिनो सोम्बोस, परिवहन संचार और निर्माण मंत्री तथा व्यापार जगत के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पांच देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में

0: नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार,

सेनाओं के बीच रेल मंत्रालय ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। ये आग्रह कल नई दिल्ली के रेल भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कुछ कई घटनाओं और इशारा मिला है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह SPG के प्रमुख होते हैं। SPG के पास प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुई दुष्कर्म हत्या मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। इसका नेतृत्व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के पूर्वी जोन के संयुक्त निदेशक करेंगे। न्यायालय ने SIT को 25 जून तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। अदालत का ये फैसला पीड़िता के परिवार की बार बार जताई गई चिंताओं के बाद आया है। पुलवामा आतंकी हमले की कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मार कर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात हॉर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न भी के उत्तर में कही। श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी योशिमित्सु। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से हालात लगातार गंभीर है।

आनंद जीवन की ओर बढ़े। ये था आज का चिंतन। अब सुनिए भक्ति रचनाएं।

लाही लगाने चला था गायक अनूप जलोटा। इस श्रृंखला का आप भाग 11 सुनेंगे। भूले बिस्तर की एक कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7 बजे। हम है राही प्यार से 7:30 पर।

से 15 मिनट तक सुनिएगा वंदे मातरम एक जय घोष, लेखक मिलिंद सबनिस। इसका भाग 29वां स्मृत किया जाएगा। नए गीतों पर आधारित कार्यक्रम जिसे लोग आप सुनते हैं सुबह 8:30 पर और रात को 8:15 पर।

minutes by some new Archie from Bad Guy Show. You'll see changes to his up and he's God. So, John, let's go to bed. Sigara ke andar jo suniye, hello farmaish, subah 10 baje. Rang Tarang karyakram 11 baje. बारह बजकर पांच मिनट पर सुनिएगा यादव की महफिल। श्री दफ्तर पर आप इसका आनंद ले पाएंगे दोपहर बाद एक बजे। दिन में दो बजे एक बार फिर से आप सुनेंगे कार्यक्रम बंदे मातरम एक जय घोष। लेखक मिलिंद सबनिस, इसका भाग 29 का प्रसारित होगा। सुबह 12 बजे आप सुन पाएंगे दिन में 2:30 पर। हेलो सहेली, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 3 बजे। बेचारा कैंटे से सुनिएगा गीतों भरी कहानी, शीर्षक गोल्ड मेडल, लेखक इब्राहिम यादगिरी की लिखी सारी है, संपादक श्री रोज कहना प्रगति का है, शाम 4 बजे आपकी बेचारा गीतों भरी कहानी सुन पाएंगे। माया जी का आनंद आप लेंगे शाम 5:05 पर नए तराने नए पुराने ये कार्यक्रम आप सुनेंगे। सिर्फ 35 मिनट पर शाम को संध्या व्यंजन का समय रहता है। पौधसाथियों का कार्यक्रम जयमाला शाम 7 बजे आप सुनते हैं। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिएगा गुलदस्ता। 8 बजे हवा महल में सुनिएगा नाटिका अनोखी बीमारियां, लेखन सुमन माधुरी का है, निर्देशन पुरुषोत्तम दाढ़ेकर का।

गोत्र सदस्य का कथन निषाद राज को भेजा। बूढ़ा ठीक कह रहा है, मूर्ख होते हैं जो बिना विचारे जल्दी में काम करके बाद में पछताते हैं। अतः भरत का तीन स्वभाव जानकर ही युद्ध अथवा मित्रता करना श्रेयस्कर होगा। पहले भरत से मिल लेना उचित समझकर निषाद राज ने कंद मूल फल इत्यादि मंगवाए और भेंट का सामान सजाकर उनसे मिलने चले। भरत के दल के निकट पहुंच निषाद राज वहां मुनिवर वशिष्ठ को देख दूर से ही अपना परिचय देकर दंडवत प्रणाम करते हैं।

श्री राम के मित्र हैं, ये सुनकर भरत रथ से उतर आते हैं और दंडवत पड़े निषादराज को उठाकर अंक में भर लेते हैं। लगता है जैसे स्वयं लक्ष्मण से उनकी भेंट हो गई हो। भरत तथा निषाद का ये मिलन देख देवगण धन्य धन्य कर पुष्प वर्षा करने लगते हैं, जिसे इस लोक में अत्यंत तुच्छ और नीचा माना जाता है। उसी निषाद को गले लगाकर भरत अत्यंत पुलकित हो जाते हैं। इस निषाद को तो श्री राम ने छाती से लगाकर जगत को पवित्र करने वाला बना दिया है।

0: श्री अनूप जलोटा जी, एक बार फिर हम उनका स्वागत कर रहे हैं स्टूडियो से।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: हम अपने श्रोताओं को बता दें, अनूप जलोटा जी की गाय बच्चों के अनगिनत एल्बम से हम उनसे पूछते हैं उनके एल्बम्स के बारे में, उनके कौन से प्रिय एल्बम है और उसके बारे में क्या बताएंगे।
1: बहुत से एल्बम्स हैं, रिकॉर्डिंग हमने बहुत की है, पूरी रामचरित मानस रिकॉर्ड की है, भगवद गीता को गाया है और तमाम भजन जो आप सुना करते हैं, भजन संध्या, भजन गंगा, भजन आरती, भजन यात्रा, इस तरह के कुछ 100-125 एल्बम्स हैं। कई और भाषाओं में गाया, गुजराती, मराठी, पंजाबी, बंगाली, सिंधी, उड़िया, 9-10 भाषाओं में गाया। हर भाषा में गाकर आनंद आता है क्योंकि भाषा कोई भी हो, भाव तो वही होता है। मुझे याद है जब मैं पहली बार बंगाली रिकॉर्डिंग कर रहा था, वो रिकॉर्डिंग करने में मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने उसी दिन म्यूजिक कंपनी से कहा कि अब मैं कम से कम 8-10 एल्बम और बंगाली बनाना चाहता हूँ, मुझे इतना अच्छा लगा। और उसके बाद मैंने करीब 40 एल्बम बंगाली के बनाए। बहुत आनंद देते हैं वो भजन।

0: बढ़िया अनुज जी, अगर मेरी जानकारी जहाँ तक सही है, शाम चौरासी घराना पंजाब से ताल्लुक रखता है, तो फिर
1: गुरु नानक जी से।

से गुजरता है। और ये समझाने के लिए बड़े सुंदर उदाहरण दिए हैं जिससे ये बात

0: सुंदर बहुत सुंदर रचना थी। और अरुण जी, भजन के चाहने वालों के लिए आप एक किताब की तरह है, भजन के संस्कार आप आने वाली पीढ़ी को किस तरह से देना चाह रहे हैं और क्या कर रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी में भजन की परंपरा कायम रहे?
1: भजन की परंपरा तभी कायम रहेगी जब भजन सरलता से सुंदर ढंग से गाए जाएंगे। अब देखिए सरलता करेंगे, अच्युतम केशवम

समापन आरती से करते हैं, तो ये जो भक्ति भाव की धारा थी इसका समापन भी आरती से हो तो बेहतर है।

सुंदर मंत्र इन कर रहा है कि अब गायन की इस श्रृंखला को विराम दिया जाए, लेकिन वक्त की पाबंदी है और वक्त यहाँ आ पहुंचा है कि अब इस श्रृंखला का समापन हम करें। अपने श्रोताओं को बता दें, श्री अनूप जलोटा से बातचीत पर आधारित श्रृंखला ऐसी लागी लगन की ये

0: अनुमति दीजिए। अनुप जलोटा जी, आपका हम पहले दिल से शुक्रिया कर रहे हैं कि विविध भारती के स्टूडियो में आप आए और इतना सारा वक्त दिया, श्रोताओं को अपने गायन से मंत्रमुग्ध किया।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे भी आपको बहुत मजा आया।
0: अजय जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आशीष जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।

सभी का तहेदिल से स्वागत है। मैं हूँ आज आपके साथ पूजा रानिया। आइए आपको सुनवाते हैं इस कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति।

बताया भी हमने आपको सुनवाया फिल्म शादी के खुर्शीद और साथियों के स्वरों में मुंशी दिल का लिखा गीत था हेमचंद प्रकाश का संगीत। और आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म डॉक्टर से पंकज मलिक पर गाए भी इसे लिखा है आरजू लखनवी और ए एच शोर ने पंकज मलिक का ही संगीत है।

फिल्म से लता मंगेशकर और साथियों के स्वरों में। ये गीत जिसे लिखा है सचिन बदायूनी ने और संगीत सचिन नौशाद ने।

0: सदा रहेगी।
1: सुनिए रोज रात 10 बजे

शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

के अंतराल की बात का कार्यक्रम भूले बिछड़े गीत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में समापन का गीत। कैसी आदमी ने इस

की आवाज में अभी आपने ये सुना फिल्म यास्मीन से। अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आर पार का गीत। गीता दत्त की आवाज में, मजनू सुल्तान फिल्म की बोल में, ओपी मैयर का संगीत।

इंटेलेक्ट कर रहे हैं इस बीच के साथ आज मैं पूछ रही हूँ मोहम्मद

फिल्म वक्त से आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजें हैं। साहिल लुधियानवी का लिखा गीत है और इस गीत को संगीत किया है।

की बाद आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से हम है राही प्यार के कार्यक्रम में स्वागत है। आपको सुनना है जैसे कि आप फूल फिल्म से महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर का गाया ये गीत। साहिल लुधियानवी के बोल हैं संगीतकार

रखी और आशा भोसले सजाया की। गीतकार साहिल लुधियानवी, संगीतकार एन दत्ता, फिल्म का नाम साधना।

को सुनते हैं। रवि ने गर्ज बनाई है। आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजें हैं फिल्म का नाम

कपूर की आवाजों में ये गीत आपने सुना और ये गीत था कार्यक्रम हम है राही प्यार की का आखिरी गीत।

0: Scriptura proprio in discorso storico la descriva a tale राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद श्री फर्स्ट डिलाइडस के लिए भी भारत से आता है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति विभिन्न पारस्परिक सहयोग को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इन क्षेत्रों में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति, आवागमन, रक्षा और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI, फिनटेक, नवाचार और अनुसंधान शामिल है। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। दोनों देश अगले वर्ष फरवरी में अपने राजनयिक संबंधों के
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पांच देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा, सियासत ही समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि पांच देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत ने 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है।

समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।

Hygiene Origin 77 को निशान बनाकर हाइजीन में हुई घटनाओं के बीच यात्रियों की यात्रा के दौरान सतर्क रहें और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। रिपोर्ट।

पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में जय वीर डिब्बो वाले जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे, जिसमें केवल 8 डिब्बों के साथ चल रही थी। श्री वैश्वनाथ साबरमती जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के जैसलमेर तक का विस्तार का भी उद्घाटन करेंगे। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को 3 सदस्यीय विशेष जांच दल गठित करने का आदेश दिया है। ये दल अगस्त 2024 में आर्टिकल मेडिकल कॉलेज की प्रशिक्षु डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले की विस्तृत जांच करेगा।

विश्वविद्यालय लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मुकुट किरुड़े को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर किरुड़े ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। सीबीआई अधिकारियों ने कुछ दिन पहले डॉक्टर किरुड़े

राज्यपाल विश्वनाथ और लेकर मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ।

0: घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फर आबाद में अज्ञात हमलावरों ने सरसरी गोली चलाई। गंभीर रूप से घायल बुरहान को अस्पताल ले जाया गया जहाँ उसकी मौत हो गई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने अलबद आतंकी संगठन में शामिल हो गया था। 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में 40 से अधिक सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। पंजाब पुलिस ने पठानकोट जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर इंटरनेट से जुड़े सीसीटीवी कैमरे के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बलविंदर सिंह ढिल्लों ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार आरोपी बलजीत सिंह ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पुल के पास सीसीटीवी कैमरा लगाया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात हॉर्मोज जलबंधों मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर कही।
1: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है, वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। क्या एक महत्वपूर्ण यात्रा है, मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ में हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: श्री रूबियो 23-26 मई तक भारत में रहेंगे। इस दौरान वे कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली का दौरा करेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री फेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोटेगी तित्सुमोतो के भाग लेने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम एस

राजू मैंने क्वाटा नहीं लिए पुरस्कार ग्रहण किया।

Lokati di sabre, head of the American Dorian Mitch, against the unrestricted Sastav and Karam. Pachimangal Sarkar Dwara Rajya ke sabhi madrasa mein Vande Mataram anivarya karne ka samachar bhi aaj sabhi samachar patron ki surkhi bani hai. Janpatra likhta hai, Pachim Bangal Sarkar ka aadesh, sabhi madrasa mein ab Vande Mataram gana anivarya hai. हिंदुस्तान ने पुलवामा आतंकी हमले के साजिशकर्ता की मौत का समाचार दिया है. पत्र लिखता है, पीओके में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर ढेर किया, पुलवामा हमले का सूत्रधार माना गया.

प्रधान विभागी मजारे कानी से अपने संपादकीय पढ़ने

में भी अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटन्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात पर यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा वंदे मातरम इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जयघोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, हिंदी अनुवाद जयंत पाठेकर, इस श्रृंखला की 29वीं कड़ी।

समाज एकजुट था। इतना ही नहीं, उसी आंदोलन के समय वंदे मातरम गीत प्रसिद्ध हुआ। इस आंदोलन में लड़ने वाले मौलवी मोहम्मद अकरम खान, मौलवी जमशेद हुदा, मौलवी दीन मोहम्मद जैसे कई लोगों ने वंदे मातरम का समर्थन किया था। उनमें से मोहम्मद अकरम खान जैसे उच्च शिक्षित धर्मगुरु स्वयं इस आंदोलन के प्रमुख नेता सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के साथ वंदे मातरम गाते थे। वंदे मातरम पर पहली पाबंदी मुसलमानों ने नहीं बल्कि ब्रिटिश सरकार ने ही लगाई थी।

0: युद्ध वर्जना का रूप ले लिया और बंगाली जनता ने इसे किसी तेज धार हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यही कारण है कि इन दो शब्दों ने ब्रिटिश सरकार को भयभीत कर दिया। 7 अगस्त की विराट सभा के पश्चात एवं 16 अक्टूबर को लागू हुए बंगाल के विभाजन के तुरंत बाद अगले ही महीने 8 नवंबर को विभाजित बंगाल के नवनियुक्त ने एक परिपत्र जारी किया था जो योन सर्कुलर के नाम से कुख्यात है। वंदे मातरम पर पाबंदी के इतिहास में ये पहला हुक्मनामा है। इस हुक्मनामे में भी मुसलमानों के तुष्टिकरण का प्रयास साफ दिखाई देता है।
1: I am desired by the Lieutenant Governor to inform you that incidents have recently occurred, which indicate that the shouting cry Vande Mataram in the streets or other public places Prati Vibhagiya Ayukta Dhaka. Mahoday, Lieutenant Governor ki ichha ke anusar, main aapko ye suchit karna chahta hoon ki haal hi mein aisi ghatnaye hui hain जिनसे संकेत मिलता है कि सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर वंदे मातरम का नारा लगाने से शांति भंग होने की संभावना है, इसलिए इस पर उचित रूप से रोक लगाई जानी चाहिए। इस कारण से पुलिस को आवश्यक निर्देश दिए जाएं, ऐसी मैं आपसे विनती करता हूं। लेफ्टिनेंट गवर्नर की इच्छा के अनुसार मैं आपको ये भी सूचित करना चाहता हूँ कि वर्तमान जन भावना की स्थिति में सार्वजनिक स्थानों पर राजनीतिक या अर्ध राजनीतिक सभाओं की अनुमति न दी जाए, हालांकि वे बंद परिसरों में आयोजित की जा सकती हैं। यदि जुलूस या ऐसी सभाएं अनुशासित हों तो उन्हें सड़कों से गुजरने की अनुमति दी जाए, परंतु उनमें गाना या नारे लगाना नहीं होना चाहिए। यही आदेश संकीर्तन मंडलियों पर भी लागू माना जाए। श्रीमान शिलर ने यह भी सूचित किया है कि कुछ स्थानों पर अंग्रेज महिलाएं स्टेशन रोड से अपमान या परेशानी उठाए बिना गाड़ी में नहीं जा सकती है। प्रशासन पर लगा यह गंभीर कलंक पूरी तरह समाप्त होना चाहिए। सड़कों पर गश्त की नीति को यदि आवश्यक हो तो मजबूत किया जाए और जहां यूरोपीय लोगों या मुसलमानों के साथ अशिष्ट व्यवहार किया जाए वहां हस्तक्षेप करने, नाम पता दर्ज करने और इनकार करने पर अपराधी को थाने ले जाने के आदेश दिए जाएं। प्रमुख सचिव पीसी लियोन एंड द लैटर आर रिफ्यूज्ड कंडक्टिंग ऑफेंडर

समाज के मन में वंदे मातरम के प्रति संदेह और दूरी पैदा करने का प्रयास सबसे पहले इसी हुक्मनामे के द्वारा किया गया। बारिसाल के अधिवेशन में वंदे मातरम कहने वाले आंदोलनकारियों पर फुल्लर के आदेश से जो अमानवीय लाठीचार्ज हुआ, उस बारिसाल अधिवेशन के अध्यक्ष अब्दुल रसूल मुस्लिम ही थे। फुल्लर के इस आदेश का मुस्लिम जनता पर कोई खास असर नहीं हुआ, उल्टे फुल्लर की कार्रवाइयों के कारण सभी ओर से उन पर आलोचना

0: पूर्व बंगाल के नवाब मोहम्मद हुसैन के बेटे मोताहर हुसैन ने अश्विनी कुमार दत्त के साथ मिलकर स्वदेशी आंदोलन का प्रचार किया। उन्हीं के नेतृत्व में मुस्लिम किसानों ने वंदे मातरम पाबंदी के विरोध में नारे लगाते हुए जुलूस निकाले। लाला लाजपत राय ने पंजाब में उस दमन चक्र के खिलाफ आंदोलन शुरू किया जो फिलर ने बंगाल में चला रखा था। एक सभा में वे स्पष्ट रूप से बोले,
1: वंदे मातरम नारे का मुसलमान विरोध करते हैं, इसलिए सार्वजनिक शांति कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार ये उपाय कर रही है। ये परेशानियों से बचने के लिए दिया गया एक झूठा तर्क है। एक भी मुसलमान ने वंदे मातरम की पाबंदी का

0: के नेताओं की उपस्थिति में इसी तरह का आह्वान किया था। 1905 में ही कलकत्ता के पास एक ब्रिटिश नागरिक की मालिकाना हक वाली फोर्ट ग्लॉस्टर मिल नाम की कपड़ा मिल थी। कुछ असंतोष के कारण कामगारों ने वहां के अंग्रेज अधिकारियों के सामने वंदे मातरम के नारे लगाए। मालिक ने तत्काल कार्रवाई की। इससे गुस्सा होकर शाम को मिल छूटते समय लगभग 9000 मजदूरों ने एक साथ वंदे मातरम के नारे लगाने शुरू कर दिए। मालिक ने जिला पुलिस अधीक्षक को भी बुला लिया। कुछ मजदूरों को गिरफ्तार किया गया।
1: उसके बाद वंदे मातरम पर लगी पाबंदी हटवाने के लिए उन मजदूरों ने एकजुट होकर हड़ताल की। बंगाल में अब शिक्षित ही नहीं बल्कि कामगार वर्ग और गांव देहात का समाज भी वंदे मातरम के

0: की कड़ी मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस हिंदी अनुवाद संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रिकर शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय वाचक स्वर जयंत पात्रिकर और मंदाकिनी जोशी सहभागी कलाकार यूनुस खान तकनीकी सहयोग किरण बंग और अनुश्री गुप्ता कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया
1: लीजिए सुनिए दिल शांत।

रही है, इसमें आगे की कोई छात्रों को पीएचडी के लिए संरक्षित और छात्र युवाओं को विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए शत प्रतिशत का लाभ मिलेगा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने विधायक राजवीर सिंह और धनबाद के महापौर प्रभावित छात्रों को होने वाली डिजिटल

है। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हजार टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।

दिसंबर को मनाया जाता था, लेकिन इसे बाद में 22 मई की दिनांक से दी गई। इसका उद्देश्य हमें पेड़ पौधों, जानवरों और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता के महत्व के बारे में

संतुलन भी तो कितना जरूरी है। हर जीव का पारिस्थितिकी तंत्र में अपना एक स्थान जो है, किसी एक प्रजाति के गायब होने से प्रभावित हो सकता है। प्रकृति की रक्षा आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बहुत जरूरी है और जीव विविधता हमारे ग्रह का जीवनदायी ताना बाना है। हमारी हर छोटी कोशिश इससे जुड़ी है, हमें इसे बचाना होगा ताकि मानव और प्रकृति दोनों सुरक्षित रहें। हमें जीव विविधता को बचाने के लिए क्या करना

करें। उसकी बात आ जाए तो अपना घर से बना हुआ कपड़े का थैला जरूर लेकर जाए। कचरा हमेशा से ही जगह यानी पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। पानी और बिजली को बचाएं, पानी ही और बिजली भी दोनों वेस्ट ना होने दें। नदियों और तालाबों को साफ रखें। जल प्रदूषण से पानी में रहने वाले जीव मर सकते हैं। जंगली प्राणी और पौधों का सम्मान भी सिखाते हैं। जानवरों को परेशान बिल्कुल ना करें। जंगली पौधों को भी ना तोड़ें क्योंकि उनका भी पारिस्थितिकी तंत्र में एक हिस्सा होता है। अगर ये एक हिस्सा भी गायब हो जाता है ना तो सब कुछ प्रभावित होता है। अपने गांव मोहल्ले या स्कूल में छोटे छोटे प्रोजेक्ट करें जिससे पक्षियों

प्रबंधन करना चाहिए, नदियों, तालाबों और खेतों में कचरा फेंकना, उससे भी बचना चाहिए। जानवरों, पेड़ पौधों को नुकसान बिल्कुल नहीं पहुंचाना चाहिए। अत्यधिक रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग भी फसलों के लिए नहीं करना चाहिए। हमारी प्रकृति में हर पौधा, जानवर और इंसान जुड़ा हुआ है और अगर हम पेड़, पानी और जानवरों की रक्षा करेंगे तो हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और

के लोक में एक छोटी सी अंशा था।

for his kingdom.

आवाज में ये अगला गीत अमिताभ भट्टाचार्य के बोल है और धुन बनाई है शंकर एहसान।

और बीच में गैप था, इसलिए जो आप कह रहे हैं आप जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाए तो मर जाए, गाते गाते आप इस दीवार से जाते हैं, जब कर जाते। मैंने कहा कोल्टी ये क्या ज्यादती है भाई, मैं भाग रही हूँ और जम भी कर लू, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही हो सकता है। सर बड़े टेंशन में वो शॉर्ट किया मैंने,

सुष्मिता असली नाम है विजय पाटिल। संगीत का शौक बचपन से ही था और वो पहले कॉलेज के जमाने में नागपुर में और फिर मुंबई में स्टेज पे प्रोग्राम किया करते थे और उसमें बजाया करते थे। विजय पाटिल अकॉर्डियन बहुत अच्छा बजाते थे। फिर उन्होंने मुंबई में अपना एक दल बनाया और अपनी बनाई तर्जों को ही स्टेज पर प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। ऐसे ही एक कार्यक्रम में दर्शक थे दादा कौन के। वो इससे इतना प्रभावित हुए कि अपनी फिल्म पांडु हवलदार का संगीत उन्हें सौंप डाला। उन्होंने ही विजय पाटिल का नाम भी बदला। वास्तव में राम और लक्ष्मण दो व्यक्ति थे, पर उनमें से एक साथी राम की मृत्यु हो गई, लेकिन नाम दोनों का ही चलता रहा, यानी राम लक्ष्मण के नाम से ही संगीत

कलाकार राम लक्ष्मण का मानना था कि लोकप्रियता उसी गीत की होती है जिसे हर आम आदमी गुनगुना पाए। अपने संगीत में इस तत्व का उन्होंने हमेशा ही ख्याल रखा। राम लक्ष्मण की पहली सुपरहिट फिल्म रही राजश्री प्रोडक्शन द्वारा प्रस्तुत तराना, ये आई थी 1970 में। बहुत ही मशहूर हुए और लोगों ने

ने अपने सुरीले रस भरे गीतों से ऐसी ही संगीत वर्षा की। हम आपको बता दें कि गीतकार असद भोपाली के साथ राम लक्ष्मण ने भी एक सारी रचनाएं तैयार की, लेकिन उनमें से अधिकांश तो रिकॉर्ड भी नहीं हो सकी। राज के और दादा कोंडके के अलावा प्राणलाल मेहता और दीपक बहरी ने भी अपनी फिल्मों के लिए राम लक्ष्मण के संगीत को अक्सर चुना, इसलिए राम लक्ष्मण को मौकों की कमी कभी भी नहीं रही। अगर बात करें एटीज की तो बहुत सी अच्छी अच्छी फिल्में आई जिसमें राम लक्ष्मण का म्यूजिक उस समय बहुत बहुत सुना गया और सुनने वालों ने दर्शकों ने बहुत बहुत सराहा। कुछ फिल्मों के नाम याद कर लें, जैसे उस्तादी उस्ताद थे, उस फिल्म के सभी गाने बहुत अच्छे थे, और आंगन में तुलसी एक फिल्म थी उसके गाने भी लोगों ने बहुत पसंद किए, और राष्ट्रीय प्रदर्शन की सुन सजना और सुन मेरी लैला के गाने भी लोगों ने बहुत पसंद किए। और सबसे ज्यादा 80 के दशक में राम लक्ष्मण का जो गीत प्रचलित हुआ, सुना गया, सराहा गया और आज भी उसी हिसाब से सुना जाता है, वो है हमसे बढ़कर कौन फिल्म का। ये फिल्म आई थी 1981 में और ये गाना बहुत बहुत सुना गया और पसंद।

हवलदार या माला जीवन ज्वाला की अपार लोकप्रियता से प्रेरित होकर 1989 में राम लक्ष्मण ने मीना राव के साथ स्वयं गाकर मराठी हिस्सा नाम से एक मराठी पॉप एल्बम भी निकाला था। वैसे राम लक्ष्मण अपनी निजी जिंदगी में बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति थे। हिंदी फिल्मों में असफल दौर भी उन्होंने देखा, पर राजश्री ने उनका साथ नहीं छोड़ा और 1989 की फिल्म मैंने प्यार किया, इसलिए तो लोकप्रियता के कीर्तिमान स्थापित किए और संगीत तो लाजवाब था। राग पहाड़ी और शिवरंजनी की लोक धुनों का इस फिल्म में राम लक्ष्मण ने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। आधुनिक रिद्म के साथ पहाड़ी के लोक सुरों से सम्मिश्रण से सजे दिल दीवाना बिन सजना के मानीना गाना बहुत बहुत पसंद किया गया और मैंने प्यार किया की अभूतपूर्व सफलता ने राम लक्ष्मण को वर्षों बाद फिर से एक बार लोकप्रियता का

बचपन सा होता था जिसे सुनने वाले बहुत बहुत पसंद करते थे। हम आपके हैं कौन उनकी ऐसी ही फिल्म थी जिसका एक एक गीत बहुत ही मशहूर हुआ। वैसे उनकी फिल्म सातवां आसमान भी एक उल्लेखनीय फिल्म है जिसके गाने बहुत सुने।

स्मृति संगीत से सजी बहुत सारी फिल्में हैं। इस कम समय में उनकी सारी फिल्मों के गानों की हम एक एक लाइन भी नहीं सुनवा सकते हैं, पर फिर भी हमने कुछ कोशिश की।

0: और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक गेट पर हमारे स्टेशन लाइव मन की बात संगीत ड्रामा स्पोर्ट्स पल पल की भरोसे खबर हमारी वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर नया भारत आकाशवाणी
1: बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।

बात बुद्धि के लिए आयोडाइड नमक जरूरी है, इसीलिए

सुबह 19 बजे पर ये आकाशवाणी जमशेदपुर का रहे था।

for the

शिकायत के लिए मेरा सुप्रीम नमस्कार। दोस्तों, प्रभु जी का एक छोटा दोहा जो हम सभी बखूबी जानते हैं, कुछ इस तरह से है। शब्द संहारे बोलिए, शब्द

को अपने वाहन की तरह प्रयोग करता है। ये मन आपका चाहता है, चाहे कितना प्यार भरा या फिर विश्वास से ये शब्द निर्धारित

शब्दों का गुबार छाए रहते हैं, मानो शब्द का कोई मूल्य ही ना हो। वैसे शब्दों के सही उपयोग के बारे में हमें आज ये बातें सही है, और वैसे जरूरी नहीं होता कि हर जगह शब्दों की उपस्थिति

थी जिसमें सघन मौन की क्षमता है, वो कुछ भी बोले तो उसके बोलने में आगे हो जाती है। हम जितना कम बोले उतना हमारा आशय गहरा होता जाता है। वैसे शब्द तो जरूरी है, लेकिन उनसे भी ज्यादा कभी कभी निःशब्द होना चाहिए, उसके आसपास मौन की आभा होनी चाहिए। इसलिए ध्यान रखें दोस्तों, जिन लोगों के शब्दों में प्राण होते हैं वे वही लोग होते हैं जिनके पास मौन की

के मुताबिक हमारे चेहरे पर रोज 25,000 से भी ज्यादा भाव आ सकते हैं। हमारी बातचीत का मात्र 7% हिस्सा होता है और बातचीत के भूमिका 38% होती है। वही हमारा बॉडी लैंग्वेज इस संवाद में 55% की भूमिका निभाता है। और आखिर से ये भी साबित हो चुका है कि व्यक्ति को बेहतर बनाने में बॉडी लैंग्वेज का सही इस्तेमाल हम सब अब सीख नहीं पाए। बहुत सारे ज्ञान इस अध्ययन के में ऐसा भी पाया गया है कि किसी भी व्यक्ति से मिलने के चंद सेकंड के बाद ही हम ये जान लेते हैं कि सामने वाला व्यक्ति पर हम विश्वास कर सकते हैं

that they were handled by the subject. रिपोर्ट के बाद आपकी बात कहाँ और किस अंदाज में इस बात पर गौर कीजिएगा क्योंकि विशेषज्ञों के अनुसार साथी से बात करते वक्त खुली हथेलियाँ ये बताती हैं कि आप

लोग बातचीत करते वक्त अपने साथी को देखने की जगह इधर उधर देख रहे होते हैं, उस वक्त उनका ध्यान या तो कहीं और होता है या फिर अपने साथी को और उसके बॉडी लैंग्वेज को देखकर कोई भी आसानी से ये बता सकता है कि रिश्ता कितना आपका सहज और खुशहाल है। खास बात ये है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ये तरीका है और बॉडी लैंग्वेज के लिए आपको अलग से कोशिश या मेहनत को लेकर आप दोनों की सहजता, आपके प्यार, आपके सम्मान और बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से जानकारी रखते हैं। वहीं जब रिश्ते में प्यार का अभाव होता है

के झोंकों से पौधों की पत्तियां सुनसराती हैं, दिल खुश हो जाता है ना। पर क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ये सब गायब हो जाए तो हमारी धरती पर मौजूद पेड़ पौधे, पशु पक्षी और सूक्ष्म जीवों का सुंदर नमानक है, इसलिए हम कहाँ घूम पाएंगे। और यही जो सूक्ष्म जीवों का और धरती पर मौजूद पेड़ पौधों का खाना पाना है, इसे हम साइंस की भाषा में जैव विविधता।

que tu trouves de और ये इतना जरूरी है क्योंकि हमारा पूरा जीवन इसी पर टिका है। जो हवा हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं और जो पानी हम पीते हैं, ये सब हमें इसी समृद्ध

que creo que me parece que te haga más fácil de hacer. La verdad, ahora yo sé que tú también tienes que venir a tocar और इनके जितने महत्व को समझने की जरूरत है। आज के लिए प्रकृति को संभालने का सुनिश्चित करते हैं और आज के समय में धरती को हरा भरा रखने जीव जंतुओं के प्यास की जिससे कि देश को मानने का उद्देश्य ही है जैव विविधता के संरक्षण और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त स्थानीय समुदायों को सशक्त करना और 22 मई यानी के दिन को 2026 को मनाए जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम है लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट।

मनाने का है। इस दिवस को मनाने की अगर इतिहास के बारे में जाने तो बारिश में 1992 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा संयुक्त नैरोबी में आयोजित इस सम्मेलन में जैविक विविधता पर सम्मेलन

ruling by the Supreme Court of the Supreme Court of the Supreme Court of the Supreme Court of the Supreme Court of the Supreme Court of the Supreme Court of the Supreme Court of the Supreme राजा राम मोहन रॉय के बड़े भाई का निधन हो गया। उस समय समाज में एक भयानक कुप्रथा थी। राम मोहन रॉय ने अपनी आंखों के सामने अपने भाई

बात का विरोध कहा, धमकियां मिली उन्हें, लेकिन वे पीछे नहीं हट। आखिरकार उनके बड़े प्रयासों के कारण आवाज उठाई। उन्होंने महिलाओं को शिक्षा और संपत्ति का अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की

man

कर रहे थे इतिहास के पन्नों की आज की तारीख में आज और इन इतिहास के पन्नों को आज ऐतिहासिक उड़ान की बात कर रहा है जिसमें भारतीय विमानन यानी एविएशन सेक्टर को एक नई ऊंचाई दी। जी हाँ दोस्तों, आज ही की 22 मई 1948 जगह की दिल्ली का सफदरगंज हवाई अड्डा। आसमान बिल्कुल साफ था और वहाँ मौजूद हर शख्स की सांसें थमी हुई थी। तभी हवा को चीरते हुए एक स्वदेशी ग्लाइडर ने आसमान की तरफ उड़ान भरी और इस ग्लाइडर का नाम था रोहिणी। जी हाँ, रोहिणी भारत का पहला स्वदेशी ग्लाइडर, पूरी तरह से भारत में ही डिजाइन और तैयार किया गया था। इस ऐतिहासिक उड़ान के पायलट थे कुमार प्रजापति। हवा के दबाव और संतुलन के सहारे जब रोहिणी आसमान में चढ़ गया

को और डर से उन्होंने लॉकडाउन में एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई जिनका नाम जिसका नाम था हैप्पी बर्थडे मम्मी जी। वैसे मम्मी जी से याद आया दोस्तों, फिल्म डिजाइन थी शुभांशु और जलसा ने रुखसाना के रोल में, तो उन्होंने सच में ही आग लगा दी थी। सच कह चुके पर इस शॉर्ट फिल्म पर सवाल थी तो हम अपनी नजरें हटा नहीं पाते हैं। उनकी जिंदगी किसी प्रेरणा से कम नहीं है और आज उनके जन्मदिन पर हम उन्हें बेहद बधाई देते हैं, बहुत बहुत बधाई देते हैं और सुनते हैं उन्हीं

अपने का ये गीत हम आपको सुना रहे हैं, सुरेश वाडेकर और आशा भोसले के युगस्तरों में 2000 के लिखे स्टेज को सुनिए दिया था विचार में। और इसी के साथ दोस्तों आज का नमस्कार कार्यक्रम से समाप्त करने के लिए एक दोस्त

0: for me.
1: Shadow.
0: Oh, that sounds good to me.

28 megahertz, but आप सुन रहे हैं आकाश वाणी जमशेद को प्रविधित भारती केंद्र दिन के 12:06 हुए हैं। और अब आइए जो कुछ होते हैं उसके साथ आपके बीच और सुनते हैं कार्यक्रम आजादी में से स्वागत है। आइए सुनते हैं सीमा फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में, जिसने जयपुरी के लिए इस गीत को संगीत से संवाया है। सुन

रोज रात 10 बजे

दूसरे दौर की आवाजें दिलों की घनों की परवाज जिन्होंने गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिछड़े जी हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

रहे थे महेंद्र कपूर और हेमलता की आवाजों में। गीत और संगीत रविन्द्र जैन का था। और अब सुनवा रहे हैं सावन की पहली फिल्म का ये गाना, मोहम्मद रफी और सुलक्षणा पंडित की।

एक बार पढ़ लेते हैं वो इबारत जो हमारे श्रोता जो फेसबुक पर अभी नहीं पहुंच सके हैं, उन्होंने नहीं पढ़ी होगी। तो आज की इबारत कुछ ऐसी है, इधर गर्मी का जलवा कम होने का नाम नहीं लेता और उधर जून का पूरा महीना साथ लगाए बैठा है। जब भी चाहे आंधी तूफान मचा देती है गर्मी, दो घड़ी भी चैन से नहीं बैठती। एसी कूलर कहाँ तक दिल बहलाए, गर्मी दिन भर आग बरसाती है और रात में भी इसे नींद नहीं आती। छत पर चांदनी रात में भी चैन नहीं, हवा के झोंके भी गर्मी से बेचैन होकर छिप जाते हैं। गर्मी सुराही बेअसर है, ना सुनाने पर भी बादल की कोई खबर नहीं। गुस्से गर्मी के गुस्से से वो बेचारा भी डरता है। यदि कोई बात है धीरे धीरे प्यार से आ जाए तो उसका क्या बिगड़ जाएगा। ये तो सरासर गर्मी की डॉन गिरी है। और आज की इबारत के बारे में हमारे बहुत सारे श्रोताओं के संदेश आए। कुछ श्रोता कह रहे हैं कि अंतिम वक्त की पंक्ति मस्त है, और वैसे आपके संदेश और गीतों का सुंदर समावेश कुछ इस तरह होता है जैसे जुगनू और रोशनी, जैसे शहद और मिठास। वैसे एक दो संदेशों में नाराजगी भी है कि फिर गर्मी की बात या फिर मौसम की शिकायत हो रही है। वहीं कुछ संदेश गर्मी की अधिकता से परेशानी के बारे में भी है। वैसे गर्मी के मौसम में गर्मी का असर तो दिखेगा ही, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आज के दिन तो मौसम के बदले मिजाज का जिक्र करना ही है, क्योंकि बदलती जलवायु से प्रभावित होती जैव विविधता की ओर ध्यान

के लिए हरी और जैव विविधता से भरी पृथ्वी के लिए मिलकर संकल्प लेते हुए शुरू करते हैं आज का सुरीला सफर। फिर देखना तो ये है कि हमारी लिस्ट से आपकी लिस्ट कितनी मैच करती है। वैसे जैव विविधता की बात हो रही है तो

संदेश की बात करें तो संदेश है आकाशवाणी इंदौर के 71वें स्थापना दिवस की शुभकामनाओं और बधाई का, जिसे भेजा है हमारे श्रोता ने। बहुत बहुत बधाई। एक और बड़ा मजेदार संदेश है, हो जाते हैं शीत में सूरज ज्यादा संत, गर्मी आ

हमारे कुछ दोस्तों ने भेजे हैं। ये गर्मी तेरा जलवा जिसने देखा वो तपिश से जल गया। देखते ही देखते भाई मई मई का पूरा महीना पूरा हो गया। वो एसी वो कूलर कहाँ से लाऊं तेरी गर्मी जो याद जो भुला दे। गर्मी में दिन भर झुलसते रहे, रात भर करवटें बदलते रहे, गाते रहे और नींद न मुझको आए, दिल मेरा घबराए, चिपके चिपके कोई आते फैन चला दे, एसी चला दे क्योंकि सुहानी जानी रातें हमें सोने हमें छत्ते सोने नहीं देती। गर्मी इसी में चैन से जीने नहीं देती, गुस्सा गर्मी का इतना हसीन जालिम है तो सावन कैसा होगा। ला बुलाओ आना सकेगा बादल, कहने सुनने की बात, कहने सुनने दिल की बात, लग रहा है चले आएंगे बादल बिजली गरज के साथ जून के बाद अपने आप। सूरज की गर्मी से डरते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसी ही ऐसा ही कुछ मेरे मन को मिला जैसे विविध भारती चरण मचेरी में आया। क्या बात है, इन्होंने तो बहुत सारे गाने पिरो दिए आज ही इस संदेश की बारत में। क्या क्या है कविता को मरी श्रोता ने, सूरज तपता धरती जलती गर्म हवा जोरों से चलती, तन से बहुत पसीना आता, हाथ सभी के पंखा रहता, आरे बादल काले बादल गर्मी दूर भगारे बादल। क्या बात है, बचपन की ये कविता मुझे याद की है। एक और संदेश है

देश की तरह देख हो रहे हैं। प्रसन्नता का आलम यह है कि धरती का मिजाज गर्म है और इसे ठंडक के लिए की जरूरत है। शायद विविध भारती के गीतों को सुनकर कुछ शीतलता मिलेगी। चलिए देखते हैं। तो पहला गीत सुनवा ही दिया जाए, लेकिन वो सवाल याद है ना, कौन से कीट पतंग ज्यादा दिखने लगे हैं आसपास या बहुत कम हो गए हैं इन दिनों? और अगर बता सके तो ये भी बताइए कि ये गाना किस फिल्म का है और संगीतकार कौन है। दो सवाल हैं आपको देने हैं, इनके जवाब तो जल्दी

0: दिया है और आज तक करके मुसाफिर को ठंडा पानी और दूध की सामग्री सुकून देती है। अब सभी दोपहर में घोषणों में दुपक जाते हैं, सुबह शाम ये आसमान में उड़ान भरते नजर आते हैं। दिन कटते हैं तो रातें उमस भरी होती है, लेकिन उमस भरी रातों में शाम की चांदनी और रात रानी की खुशबू कुछ राहत देती है। गर्मी क्रूर जरूर लगती है, धूल भरी आंधियां चलती है, पर यही गर्मी आने वाली बारिश का संकेत भी देती है। प्रकृति हर एक बदलाव के पीछे एक संतुलन छिपाए रहती है। बहुत सुंदर बात कही आपने और इसी संतुलन को हमें संभाल कर रखना है। हमारे कुछ साथियों ने और भी बातें की हैं, लिखते हैं कि गर्मी में ज्यादातर लोग परेशान तो होते हैं, लेकिन इस मौसम का मजा बहुत है। कारण फलों के राजा रसीले और मीठे आम और फलों की रानी लीची का स्वाद को प्रसन्न गर्मी में ही मिलता है। वाकई शुक्र लिखते हैं कि मोबाइल गिरने से उसका डिस्प्ले टूट जाने से मेरा मोबाइल ठीक से काम नहीं कर पा रहा है और टाइपिंग भी ठीक से नहीं हो पा रही है। मोबाइल बीच बीच में बंद हो जाता है, इसलिए मैं इस प्रोग्राम से 3 दिन से नहीं जुड़ पाया हूँ। आज थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ, शायद सफल हो जाए। बधाई हो, आप तो सफल हो गए, आपका संदेश हमें मिल गया। और हमारी कविता लिखने वाले श्रोता ने बड़ी ही सुंदर सी कविता भेजी है। सबसे दोपहरी में जब सूरज अंगार बरसाता है, धरती की सूखी सांसों में गर्मी का मौसम गाता है। क्या बात है, पीपल की छांव तले बैठा थका मुसाफिर पुकारता है, दूर कहीं आमों के बागों से मीठा सावन याद आता है। कूलर की ठंडी सरगोशी मटके का पानी देता है, गर्मी चाहे जितनी कभी बचपन इसमें भी ज्यादा है। और बातें कही है और कहा है कि गर्मी केवल सपन नहीं, यादों की मीठी खाती है, जैसे मौसम की बाहों में भी जिंदगी मुस्कुराती है। वाकई मुस्कुराते ही तो हैं वो जुगनू जो कि शाम को निकल आते हैं। देखिए आपको बताइएगा हमें और ये गाना आपको सुनवा रहे हैं, सुनिए और बताइए फिल्म का नाम और कलाकारों के नाम और बताइए ये गाना आपकी लिस्ट से मैच कर रहा है या नहीं।
1: झूमता मौसम

ये गाना तो बहुत सारी ठंड से कराता है। मस्त महीने की बात ही कई बार मन को ठंड दे देती है। मानस सिन्हा और शम्मी कपूर के साथ राजकुमार ने इस फिल्म में प्रमुख भूमिका निभाई थी। हमारे साथियों का संदेश बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ श्रोताओं ने बताया है कि खूब पानी पीना चाहिए, जितना हो सके धूप में घर भर के ना निकले, कोई जरूरी काम हो जाए और पंछियों को का भी ध्यान रखें तभी जितना हो सके। और गर्मी के दिन सुहाने होते हैं, आम पके कटहल गन्ने का रस से दिन अच्छे कटते हैं, मोगरे की सुगंध से घर आंगन महकता है। क्या बात है, मेघालय से के एक उसकी इन्होंने अपनी एक याद साझा की है कि डॉकी नदी जो विश्व की पारदर्शी साफ पानी की नदी है, वहाँ नौकायन का आनंद स्मरणीय था। थोड़ी दूर पर सीमा की बात इन्होंने की है कि भारत के एक पत्थर निशान था जिसके उधर न हम जा सकते हैं और ना वहाँ से कोई और आ सकता है।

छोटा बता रहे हैं मच्छर पीटियाँ बहुत बढ़ गई हैं, और एक और छोटा कह रही है कि हम लोग कमरे में सोते हैं एसी चलाकर, कल रात को बिजली वाली भी चली गई। आजकल के जैसे घर जिसमें बाहर से हवा नहीं आने पाती है, खिड़की खोलने पर भी बाहर से गर्म हवा भी आती है। रात के 3 बजे बिजली जाने आई तो थोड़ा सो लिए।

की बात तो है ये। और संदेश कुछ भरे सुराही के भी हैं, हम पढ़ रहे हैं बस अभी। तो श्रोता कह रहे हैं कि गर्मी केवल मौसम ही नहीं एक जीत बन गई है, कभी कभी सिर्फ घर

करते हैं। डर में किसी डॉन से कम नहीं इंसान। वो अपनी मौजूदगी का ठप्पा हर क्षण बड़े आत्ममुग्ध अंदाज में जमा रही है। इस तीसरा मौसम में खुद को हाइड्रेट और सुरक्षित रखना सबसे जरूरी है। खिलखिलाती धूप से बचाव के लिए अपने शहर का मौसम अपडेट और अलग देखें। खुद को तरोताजा रखने के लिए पर्याप्त पानी पीने और तरल पदार्थ लें। घर के अंदर ही सुरक्षित रहें, पर कई बार मजबूरी होती है घर के बाहर निकलना भी। सन्नाटे भरी सूनी सड़कों वाली सतीली दोपहर का यह महीना, और अभी तो जून का महीना आने को बाकी है, वो महीना तो गर्मी को चोटी पर पहुंचा देता है। कुदरत का नियम है, वो जिंदगी को सहेजने वाली चीजें जरा कहीं जूसी से ही बचती है हम सबको। इसलिए प्रकृति जितना भी देती है कम लगता है। उसी तरीके मच्छर और सिराही का पानी हमें उतना शीतल नहीं लगता जितना हमें चाहिए होता है। हमें कुछ और की प्यास बनी ही रहती है। मैंने ये गर्मी की दादागिरी है, मगर इन दिनों को कभी बच्चों की उम्र में घर पर उनके साथी बनकर कभी थोड़ा बड़प्पन से सोच कोई समझदारी से बिताए तो ये महीने खुशियों के दस्तावेज बन जाएंगे। वाकई क्या खूब बात कही आपने। तो चलिए खुशियों का एक और दस्तावेज इस गीत के साथ आपको बताने हैं कलाकारों के नाम।

लेकिन भरी दोपहर में भी थोड़ी सी ठंडी की राहत मिल रही है तो वो है विविध भारती के गानों की बरसात जो मन को शीतल कर रही है। सचमुच कुछ भी कहने बचपन में धूप नहीं लगती थी लेकिन जब से बड़े हुए तो हर मौसम महसूस होने लगता है। कुछ भी हो लेकिन पेड़ की छाव की बात ही कुछ अलग। पीपल की छाव के नीचे छोटी छोटी पानी की फुहार आती है जो बड़ा ही सुकून देती है।

चाहिए कि मेरे उदासी के मस्त गानों से जरूर ठंड मिल रही है। वैसे तो गर्मी से बुरा हाल है। एक श्रोता ने कहा है कि हम सब इतनी अच्छी तरह से घर में रहते हैं, पर हमारे फौजी भाई फुल गर्मी या सर्दी में अपनी ड्यूटी करते हैं। अब सवाल का जवाब, श्रोताओं ने बताया है फिल्म का नाम दिल, आमिर खान और माधुरी दीक्षित ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई थी। बिल्कुल सही जवाब है। और अब एक बारी में एक सवाल की, एक और सवाल है हम पूछते हैं आपसे कि अक्सर ऐसा होता था कि गर्मी में हवा बंद होने पर चीजों के नाम लो तो हवा चलने लगेगी। और ऐसा होता था ना कि खूब सारे लोग छत पर सो रहे हैं, बच्चे हैं, और हवा बंद हो गई अचानक, और फिर ये हुआ कि चलो भाई कोई खेल खेलते हैं, कुछ नींद आ जाए। इस खेल खेल में कई बार हवा चलने भी लगती थी और वो टोटका सफल माना जाने लगता था। तो बताइए आपने कभी ऐसा कोई खेल खेला है हवा को बुलाने वाला? अगर खेला हो तो हमें जरूर बताएं। और हमारे श्रोता ने कहा है कि खपरेल वाली छतों में आज का सोने में बहुत अच्छा लगता है, हमने अपना बचपन इन्हीं छतों के नीचे गुजारा है। एक श्रोता कह रहे हैं कि गर्मी से हम सभी इतने परेशान हैं कि हम चाहते हैं कि ठंडी हवाएं आए। जून महीने की गर्मी का जून महीने में सोचेंगे, इस समय की हालत तो यह है कि दोपहर को चैन से सोने वाले की नींद उड़ गई है। दिया बेकरार है बरसात के लिए, कब रिमझिम बारिश हो और हमें जालिम गर्मी से छुटकारा छुट्टी मिले। ओहो, एक और श्रोता ने कहा है कि गर्मी अपने पूरे दबाव पर है। दिल्ली में 12-44 डिग्री से ज्यादा चल रहा है, रातें बेहद गर्म हवा के साथ बीत रही है, जिसका कारण है बिजली कटौती। टेरेस पर रखी 1000 लीटर की टंकी का पानी भी ऐसा हो जाता है जैसे गीजर से पानी आ रहा हो। बाप रे, ऐसी भरी गर्मी में ठंडक का एहसास दिलाते कुछ बेहद शानदार गाने सुनने को मिल जाए तो क्या कहने। कार्यस्थल पर भी बेहद गर्मी हो रही है, कार्य चल रहा है, इसी बीच कुछ पंक्तियां याद आ गई जिन्हें साझा कर रहा हूँ, जो कक्षा 4 में पढ़ी थी। चिलचिलाती धूप को

हरियाम का संगीत है नसलाल पुरी के बोल हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में आपने गाना सुना और जवाब दिया है काफी सारे श्रोताओं ने। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे एक श्रोता ने बताया है कि जब लाइट चली जाती थी तो हम लोग अंताक्षरी खेलते थे और एक और श्रोता ने बताया है कि जब बिजली चली जाती थी बचपन में तो हम बच्चे एक डेढ़ तीन गिनती शुरू करते थे कि शायद दस दिन के बच्चे आ जाए तो उसका कभी कभी सफल हो जाता था। क्या बात है। और एक बहुत ही प्यारा सा संदेश है, पूर्वा के साथ बेटा अर मल तर मल सूरी कतर मल मेक धर्म पूर्ण प्रताप चलो ओ पूर्वा झर झर बता, ऐसा बोला जाता था। मैं कहूंगी तो आप सब हंसेंगे पर सचमुच जैसे ही बड़े लोग इस बात को बोलते थे हम भी साथ साथ बोलते थे और हवा बहने लगती थी। क्या बात है। जालंधर के तापमान के बारे में बताया हमारे श्रोता ने 40 डिग्री बाप रे। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि सख्त टंकी में पानी सूरज उबाल उबाल के रखता है। सही बात है। पीला कमेल लगाया हुआ है घर के बाहर एक श्रोता ने जिसकी छांव में कभी गाय आकर बैठ जाती है और गुलमोहर 25 साल पहले लगाया था आज बड़ा होकर छाया दे रहा है, ऐसा हमारे श्रोता ने बताया है। श्रोता कह रहे हैं कि इतनी गर्मी को देखकर भी हम इंसान क्यों नहीं समझते कि हम ज्यादा नहीं तो कम से कम एक दो ही पेड़ लगाएं और उसकी देखभाल भी करें, उसका लाभ हमें और हमारी अगली पीढ़ी को मिलेगा। यदि हम प्रकृति के साथ लेते ही रहेंगे तो बात नहीं होगी, कुछ तो हमें भी देना ही पड़ेगा। मतलब पेड़ लगाना और जितना हो सके पानी बचाना, बिजली बचाना, जहाँ गाड़ी की जरूरत ना हो वहाँ पैदल जाना, प्लास्टिक का उपयोग बहुत ही कम करना,

तपन अपनी प्रसन्नता आपके हिंदी माँ वेश और आसान में सूर्य के ताप की प्रसन्नता तीव्र हो जाती है। गर्मी ऊर्जा और प्रकृति का चक्र भी है। मानव मन की भावनाओं एवं तपस्या का चरम रूप भी है। वाकई बहुत बड़ी तपस्या है गर्मी तो। और एक और श्रोता ने कहा है कि आधुनिकता के बदले परिवेश में गर्मी का प्रकोप कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का नतीजा है ग्लोबल वार्मिंग। कच्चे जंगल बड़े बड़े दरख्त इतनी निर्भरता से काटे दिए जाते हैं जिसका बदला प्रकृति इस तरह से ले रही है। घरों ऑफिस कारों के एसी से निकलने वाली गर्म हवा वातावरण को और भी गर्म कर देती है। जब एसी कूलर नहीं होते थे तो और तरीकों से घर ठंडे रखे जाते थे। बताइए तो जरा वो कौन से तरीके हैं। और हाँ ये गाना सुनिए और बताइए कि गीत किसने लिखा है और

शुक्रिया। अच्छा बहुत अच्छी आवाज विश्वामित्र आदि बोल इतनी भी बुरी नहीं होती। इस समय फसल कटकर घर आती है, लोग साल भर के लिए गेहूँ चने दालें मसाले आदि संग्रह करके रखते हैं। फिर धूप में ये सब अच्छी तरह से धोकर सुखा

Sonuçta ailem için olan tercihim farklı şimdi. घर आती है लोग चार घर के लिए गेहूँ चने दालें मसाले आदि संग्रह करके रखते हैं। फिर धूप में ये सब अच्छी तरह से धोकर सुखा

बातें कम हो गई हैं और जो जीवन का रुख बदला है तो उसमें बहुत सारी चीजें जीवन से गायब हो गई हैं। तो उन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं। गर्मियाँ तो आना जरूरी है क्योंकि मौसम का चक्र कैसे पूरा होगा। एक और श्रोता कह रहे हैं कि बचपन में मिट्टी के घर को गोबर लीप कर ठंडा किया जाता था। मट्टी के नीचे बालू और गीला कपड़ा उड़ाकर ठंडा रखा जाता है। बचपन में सबसे ठंडा गाय के गोहाल में लगता था। ओहो, ये तो मैंने नई बात बताई। वैसे एक और श्रोता कह रहे हैं कि हर वर्ष वृक्षारोपण कार्यक्रम चलता है लेकिन उसका नतीजा अभी तक नहीं निकल पा रहा है, पता नहीं क्यों। भाई पेड़ लगाने के साथ साथ पेड़ों की देखभाल भी तो करनी जरूरी होती है और छाया देने वाले पेड़ बड़े तक बड़े होने में तो थोड़ा समय लग ही जाता है। एक छोटा कह रहे हैं कि जून की स्थिति तो वैसे जून तो नहीं भाई, ये तो मई चल रहा है। मई की स्थिति तो हम इसको सही करके पढ़ लेते हैं। जैसे पूरे शहर को बंदर बना लिया है, सूरज देवता सुबह होते ही अपना रौद्र रूप लेकर निकल पड़ते हैं, मानो किसी से पुराना बदला ले रहे हों। दोपहर की तो बात ही छोड़िए, शाम ढलने के बाद भी दीवारें आग हो गई हैं, ठंडे पेड़ पौधे बीजाणुओं का सिर झुकाए खड़े हैं और परिंदे छाँव की तलाश में भटक रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने मौसम की बात कही है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि

अगली फिल्म करेगी, तभी आपने सुना। और हमारे श्रोताओं ने बताई है बहुत सारी बातें गर्मी के बारे में। जब एसी कूलर नहीं था तो खास की ताकि खिड़की में साउंड भिगो कर घर ठंडा किया जाता था। एक और श्रोता बता रहे हैं कि मिट्टी के घर खपरेल वाले बहुत ठंडे होते थे, पेड़ पौधे भी खूब लगे होते थे। मेरी दादी वाला घर बहुत सुंदर था, पर पापा को तो पक्का घर चाहिए था ना, वो बड़ी शिकायत है। अपनी जगह महसूस करनी है, प्रोग्राम की बातें समझनी है तो बाहर गर्मी में बैठ कर सुनना चाहिए, रूम के अंदर एसी पंखे में बैठ कर नहीं, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। एक और श्रोता ने कहा कि इंसान कितना स्वार्थी है, गर्मी के दिनों में सूर्य देवता से कहता तुम कब जाओगे और सर्दियों

समय अच्छा नहीं लगता और बाद में याद आता है। हाथ से झलने वाले पंखों को याद किया हमारे श्रोता ने, और एक श्रोता बता रही है कि 10 बजे से ही खिड़की दरवाजे सबको बंद कर दिया जाता था। खिड़की पर मोटे सूत

सोया जाता था और शाम को फिर छठ आराम को धो दिया जाता था। वो भी दिन थे। और अब अगला गाना, इस गाने को सुनिए और हमें बताइए कि ये फिल्म कौन सी है और आवाज किन की है।

सारे मौसमों का अलग अलग महत्व है और तरह तरह के पेय पदार्थ उन्होंने बताए हैं कि वो पीकर हम अच्छी तरह से गर्मी बिता सकते हैं। और एक और छोटा कह रहे हैं कि गर्मी आज की बारिश है प्रकृति और मौसम पर हो, कहीं पर तेज और भयंकर गर्मी पड़ रही है तो कहीं पर झमाझम बादल बरस रहे हैं। हम भी ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पर गर्मी का कोई नामो निशान नहीं है। अभी कल रात को भी हमारे यहाँ बारिश हुई जिससे मौसम और भी सुहाना हो गया। तो बताइए ना, ये अंदाज मौसम का क्या बदला नहीं लगता? और इस तरह के अंदाज के साथ क्या ये बात बिल्कुल नहीं हो जाती कि जैव विविधता की अनुपस्थिति में हम इस तरह की जो मुश्किलें हैं वो झेल रहे हैं? एक और श्रोता कह रहे हैं कि हमारे यहाँ का मौसम बहुत सुहावना हो गया है, गर्मी की तपिश में सुकून की पानी की बूंदें बरसी और तन मन को ठंडा कर गई। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई हो। और अब कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए आपसे ले रही हूँ इजाजत। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

वंदे मातरम गाते थे।

वंदे मातरम

Ja, ich habe das gesehen, dass ich das nicht mehr so gut

संघ विरोधी आंदोलन में पूर्व बंगाल के नवाब मोहम्मद हुसैन के बेटे मोताहर हुसैन ने अश्विनी कुमार दत्त के साथ मिलकर स्वदेशी आंदोलन का प्रचार किया। उन्हीं के नेतृत्व में मुस्लिम किसानों ने वंदे मातरम पाबंदी के विरोध में नारे लगाते हुए जुलूस निकाले। लाला लजपत राय ने पंजाब में उस दमन चक्र के खिलाफ आंदोलन शुरू किया जो फिरर ने बंगाल में चला रखा था। एक सभा में वे स्पष्ट रूप से बोले,

मातरम नारे का मुसलमान विरोध करते हैं, इसलिए सार्वजनिक शांति कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार ये उपाय कर रही है। ये परेशानियों से बचने के लिए दिया गया एक झूठा तर्क है। एक भी मुसलमान ने वंदे मातरम की पाबंदी का समर्थन नहीं किया है।

0: नेताओं की उपस्थिति में इसी तरह का आह्वान किया था। 1905 में ही कलकत्ता के पास एक ब्रिटिश नागरिक के मालिकाना हक वाली फोर्ट ग्लॉस्टर मिल नाम की कपड़ा मिल थी। कुछ असंतोष के कारण कामगारों ने वहां के अंग्रेज अधिकारियों के सामने वंदे मातरम के नारे लगाए। मालिक ने तत्काल कार्रवाई की। इससे गुस्सा होकर शाम को मिल छूटते समय लगभग 9,000 मजदूरों ने एक साथ वंदे मातरम के नारे लगाने शुरू कर दिए। मालिक ने जिला पुलिस अधीक्षक को भी बुला लिया। कुछ मजदूरों को गिरफ्तार किया गया।
1: उसके बाद वंदे मातरम पर लगी पाबंदी हटवाने के लिए उन मजदूरों ने एकजुट होकर हड़ताल की। बंगाल में अब शिक्षित ही नहीं बल्कि कामगार वर्ग और गांव देहात का समाज भी वंदे मातरम के प्रति

0: संहिता मिलिंद सबमिट, हिंदी अनुवाद संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पत्रिका, शीर्षक गीत की संगीतकार अमित चौधरी, वाचक स्वर जयंत पत्रिका और मंदाकिनी जोशी, सहभागी कलाकार यूनुस खान, तकनीकी सहयोग किरण बंग और अनुश्री गुप्ता, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।
1: विविध भारती हर पल का
2: भारत की आवाज।

0: काफी ज्यादा में इन सब के लिए बातें और मजेदार किस्से
1: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, रघुनाथ मंगेशकर, सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि

ที่ฉันว่าดิ้นไม่ได้เลยเดี๋ยวดิ้นไม่ได้ไป

0: से तमाम नई संभावनाएं बनी है, इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रखते हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्ष में साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग बढ़ा है।
0: हमें बहुत खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़े हैं। आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।

Okay. Is that

बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार को लेकर एक अगले बॉर्डर की हम सुरक्षा दृढ़ बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय ड्रोन रडार आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक बार बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश

नाथी। महात्मा स्वागत है इस कार्यक्रम में आप सभी का। आइए सुनते हैं बसंत बहार।

कर देते हैं इनका संगीत था। सच के वतन बाहर फिल्म के गीत के साथ छूटे जैसे फूलों की रह गुजर खुल गई सदा बहार गीतों का ये रास्ता अब पंटूस फिल्म के गाने की ओर ले चला है। आशा भोसले की आवाज में सुनवा रहे हैं साहिल लुधियानवी का लिखा गीत, जिसे शुरू में पिरोया है सचिन।

समंजस का रोची कल्चर रामचंद्र की आवाजों में राजेंद्र जिसी का लिखा हुआ ये गीत आपने सुना जिसे शुरू में पिरोया था चलकर रामचंद्र ने और अब आपको सुनवा रही है चंपा कली फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज है।

0: एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा वृद्धि सुरक्षा में सभी प्रकार बॉर्डर की हम सुरक्षा की दृढ़ बनाने का काम आगे बढ़ रहा है। और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय ड्रोन रडार कैमरा और तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
1: झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों को लेकर राजनीतिक परिस्थिति हो गई है। निर्वाचन

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और ऊर्जा व अनियमित बिजली आपूर्ति, लो वोल्टेज और ट्रांसफार्मर खराब होने की समस्या से परेशान है। रघुवर दास जी मुख्यमंत्री

सुनने वाली सभी बच्चों और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। बच्चों, आप जो मुकाम हासिल करना चाहती हैं, जिसका आपने कभी सपना देखा था, उसे पाने की कोशिश के लिए सपनों को पंख लगा दें, क्योंकि कोई भी काम सोची से शुरुआत से ही होता है। काम छोटा बड़ा नहीं होता, खुद पर भरोसा रखें, कभी हार नहीं माने। जीवन में सफलता उन लोगों को नहीं मिलती जो तेज दौड़ते हैं, बल्कि उन लोगों को मिलती है जो दौड़ते रहते हैं और हमेशा गतिशील रहते हैं। और गतिशील रहने के लिए हमें प्रयास करना होता है, जैसा कि हेलो सहेली कार्यक्रम में आप हमें कॉल लगाने के लिए बार बार प्रयास करते हैं और सफलता मिलने पर खुशी की बरसात होती है। तो चलिए देखते हैं आज किस शहर से और कौन सी सखी हमारी पहली कॉलर होती है।

0: कहाँ से बोल रही हैं?
1: जी दीदी, मैं रंजीता डांगरे बेनीता का छत्तीसगढ़ से।
0: और क्या करती हैं आप?
1: जी दीदी, मैं हाउस वाइफ हूँ, तो घर के ही काम करती हूँ।
0: घर में भी तो बहुत सारे काम होते हैं, तो हाउस वाइफ की तो जो पूरी जिम्मेदारी होती है एक परिवार को पालने पोसने की, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप जिम्मेदारी को अपनी बाखूबी से निभा रही हैं। तो रंजीता जी, आज के दिन की शुरुआत कैसे होती है और आपके परिवार में कौन कौन है उनके बारे में भी हमें बताएं।
1: जी, मेरी दिन की शुरुआत तो सुबह ही हो जाती है। सुबह उठते हैं, फिर जैसे अभी तो गर्मी का सीजन है, चाय वगैरह तो अभी पीते नहीं है गर्मी का है तो, और सुबह उठते हैं, फिर फ्रेश वगैरह होते हैं, ब्रश वगैरह करने के बाद सीधा जैसे घर के काम है, नाश्ता वास्ता बनाना है, तो सुबह हम लोग रोटी सब्जी खाते हैं, तो फिर सुबह रोटी सब्जी बनाते हैं, उसके बाद बाकी काम है जैसे झाड़ू पोछा धुलना है, तीन बच्चे हैं तो उनको उठाना, फिर उनको ब्रश वगैरह करवाना, उन लोग को नाश्ता कराना। ये सर
0: मेरे आपके बच्चे बहुत छोटे हैं ना?
1: जी, बेटा बड़ा है
0: जी
1: और गुड़िया है, वो छोटी है जी।
0: अच्छा, और आपके क्या शौक चल रहे हैं बचपन में?
1: जी, मैं जैसे कि पढ़ाई करती थी तो उसके साथ साथ मुझे सिलाई बुनाई करने का शौक है, घूमना फिरना भी बहुत अच्छा लगता है।
0: तो आप सिलाई में क्या कर लेती हैं और बुनाई में आपको क्या पसंद है, आपने सबसे ज्यादा क्या चीज बुनाई करी है?
1: जी, मैं जैसे बुनाई में पर्दा वगैरह है या पैरदान है, थाली टोकनी का जो होता है वो सब बनाती हूँ, और जैसे कि सिलाई में मुझे सब कुछ आता है, मेरे बच्चों के लिए फ्रॉक, अपने लिए ब्लाउज।
0: क्या बात है, बहुत अच्छा हुनर है जिसको आप आगे अपने घर में करें, तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। तो आप अपनी पसंद का कोई गाना बताइए हमें।
1: जी, मैं जीना है तो हंस के जियो, खाने दाल चीनी।
0: अच्छा, तो लीजिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: दीदी आदाब
1: आदाब, अपना नाम बताइए।
0: जी दीदी, मैं जिला रामपुर ग्राम खड़िया एक नर वाली मस्जिद के पास से शबनम अब्बासी आपसे मुखातिब हूँ। दीदी दीदी ने मैं हेलो फरमाइश भी सुनती हूँ, हेलो सेली भी सुनती हूँ, सही सेली भी सुनती हूँ, सब कार्यक्रम सुनती हूँ और रेडियो मेरे पार्लर में चलता रहता है और कार्यक्रम सुनती रहती हूँ।
1: क्या बात है, यानी कि आपका नाम है पार्लर में लोगों की
0: ब्यूटीशियन हूँ। दीदी
1: ब्यूटीशियन है, बहुत अच्छी बात है आपको, यानी कि बहुत सारी बच्चों को आप बहुत सुंदर सुंदर बना करके तैयार करती हैं, है ना
0: जी। दीदी
1: जी, तो अब ब्यूटी पार्लर का काम कर रही है, पार्लर चला रही है, तो कितने साल हो गए इसको चलाते हुए?
0: दीदी ये मम्मी करती थी, अब हम भी करने लगे हैं दीदी, इसे 10-12 साल से भी ज्यादा हो गए।
1: क्या बात है, बहुत अच्छी सी बात है। और आपके शहर में क्या चीज सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है?
0: दीदी हमारे शहर में तो मतलब जो रामपुर की जो माता की चीज है वो है चाकू। कहना चाहती हूँ आपके लिए, हम वो नहीं जो मतलब तैयार किया करते हैं, हम वो नहीं जो रिश्तों से तैयार किया करते हैं। दीदी आपका पैगाम आना है, हम आपको दिल से याद किया करते हैं। दीदी
1: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी प्यारी से लाइन कही और हम भी आप सभी को दिल से याद करते हैं। तो अब आप बताइए कि कौन सा गाना आप सुनना चाहती हैं?
0: दीदी फिल्म का नाम

0: के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सुनते हैं अगले किस सखी ने हमें कॉल किया है। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं संयोगिता बोल रही हूँ चंडीगढ़ से।
0: संयोगिता जी, आप चंडीगढ़ से बोल रही हैं। चंडीगढ़ अपने आप में बड़ा ही खूबसूरत शहर है
1: जी।
0: तो इस समय वहाँ का मौसम कैसा है?
1: मौसम बहुत अच्छा है, रहता है हमेशा, लेकिन अभी 2 दिन से बहुत ज्यादा गर्मी है, लेकिन फिर भी शाम को अच्छा हो जाता है।
0: संयोगिता जी, अपने बारे में आप कुछ बताइए हमें कि आप क्या करते हैं, आपके शौक क्या क्या है और आपको किन चीजों में सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, रुचि है आपकी?
1: दीदी, मेरा बहुत ज्यादा शौक है कुकिंग का। मैं कुकिंग और बेकिंग दोनों करती हूँ। बेकिंग के लिए मैं कॉलेज जाती हूँ, वहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग देती हूँ ताकि वो अपना करियर अच्छे से कर सकें।
0: बेकिंग में आप क्या क्या बताती हैं?
1: बेकिंग में दीदी मेरा है, ब्रेड बनाना सिखाती हूँ। बहुत तरह की ब्रेड होती हैं, केक्स है, आइसिंग केक और बिस्किट्स हैं और चॉकलेट की भी क्लासेज होती है। तो मेरे जो घर के क्लासेज होती हैं वो हाउस वाइफ, रिटायर्ड लोग कोई भी कर सकते हैं और कॉलेज में सिर्फ ग्रेजुएशन के बच्चे।
0: क्या बात है, लेकिन बहुत सारे बच्चे बड़े खुश होते हैं जब आप सही तरह की केक सिखाते हैं। तो केक के लिए क्या खास जरूरी होता है ध्यान रखना कि हम जब केक बनाने चलते हैं तो हमें किन चीज़ों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए?
1: केक के लिए दीदी सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसका रेशियो। और जब हम ओवन में बनाते हैं तो भी टेम्परेचर इम्पोर्टेंट होता है, और जब हम गैस पे बनाते हैं तब भी टेम्परेचर इम्पोर्टेंट होता है। और उसका बेकिंग का एक ड्यूरेशन होता है 45 मिनट्स का, तो उसको ध्यान में रखकर के किया जाता है। मेन है इसका कि जो भी इंग्रेडिएंट हम ले वो हमारा रूम टेम्परेचर पे हो और उसका रेशियो बिल्कुल परफेक्ट हो,
0: बिल्कुल
1: बहुत अच्छा बनता
0: है। हाँ बिल्कुल सही बात है, कि रेशियो नाप तौल जिसे कहते हैं नाप तौल बहुत अच्छे होना चाहिए। इसमें इसकी तो मेजरमेंट कप भी आते हैं जिसे नापा जाता है।
1: हाँ जी जी।
0: तो जो आपने बताया गैस पर केक बनाने का तरीका, तो उसको आप किन बर्तनों में इस्तेमाल करते हैं केक बनाने के लिए?
1: केक बनाने के लिए दीदी जिसके पास ओवन नहीं है वो हेवी पैन की कढ़ाई ले, चाहे कोई पतीला ले, उसके अंदर आप नमक डाल दीजिए 1 किलो नमक। उसके ऊपर जो हम स्टैंड जिसका बर्तन रखते हैं

0: उसके बाद जो बेकिंग डिश है जो एल्युमिनियम की आती है ऊंची हमारी, उसमें हम केक के बैटर को रख करके हम उसमें रखेंगे और उसको ढक करके हमको 45 मिनट के लिए छोड़ देना होता है।
1: तो इसको संयोगिता जी, जब केक आपका 20 मिनट या 45 मिनट के लिए आपने रखा है तो उसको कैसे पता चलेंगे कि केक आपका रेडी हो गया है, तैयार हो गया है?
0: एक टूथपिक की सहायता से यदि उसको चेक करते हैं, अगर उसमें नहीं लगा है मिनट की केक आपका देती है, अगर उसमें थोड़ा बहुत लगता है तो आप 5 मिनट के लिए और छोड़ दीजिए।
1: क्या बात है। और फिर जब उसको ठंडा हो जाएगा तब उसको निकालना रहता है ना?
0: इसको निकालिए बिल्कुल अपने मन मुताबिक आइसिंग करिए और उसका मजा लीजिए।
1: क्या बात है, आपने तो बहुत अच्छी चीज बताई है। और संयोगिता जी ये बताइए, हम ये भी जानना चाहते हैं कि और आपके क्या क्या शौक है, इसके अलावा बचपन में आप क्या क्या शौक रखती थी?
0: दीदी बचपन से तो मुझे गाने का और डांस का बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन तब इतनी सुविधा नहीं थी और इतने स्कूल कॉलेज नहीं थे जहाँ ये सब चीजें सिखाई जाए। हम लोग रूटीन के जो कॉलेज में 15 अगस्त छोटे छोटे नहीं होता था, इन्हें यही सब डांस करते थे। गाने का बहुत शौक था, शादी के बाद हस्बैंड बहुत गाने के शौकीन है, बिटिया भी मेरी कटकट करती है, उसने ग्रेजुएशन किया है, तो गाने की परंपरा हमारे घर में बनी हुई है। मेरी बादशाह मेरी अम्मा, अम्मा नहीं है लेकिन वो विविध भारती बहुत सुनती थी, सखी सहेली उनका फेवरेट प्रोग्राम होता था, उन्हीं के साथ सुनते सुनते मेरी सखी सहेली सुनने की आदत पड़ी।
1: क्या बात है, हमारे विविध भारती के रेडियो के प्रोग्राम आप बहुत सारे सुनते आएंगे बचपन से?
0: बहुत बचपन से जी, हम घड़ी नहीं देखते थे, हम प्रोग्राम के हिसाब से सोचते थे कि अच्छा इतना बच गया भी आएगा।
1: ये वादा भी बिल्कुल सही थी। आपने बोला कि आपको गाने का भी शौक है, तो आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे?
0: आज तो दीदी आप सुना दीजिए मुकद्दर रेखा सिकंदर का गाना सलाम इश्क मेरी जान।
1: ठीक है संगीता जी, आपको हम आपकी पसंद का गाना सुनाते हैं।

0: ना करें। जी कल्पना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सही कार्यक्रम में, और बताइए अपने बारे में।
1: आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जो मैं बहुत दिन से फोन लगाती थी कभी भी लगता ही नहीं है, हमेशा इंगेज जाता है, तो उसके लिए मुझे आज बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि मेरा फोन लग गया।
0: क्या बात है, देखिए आज आपने इतनी कोशिश करी, आपने दिल से फोन लगाया तो आपका फोन लग गया, और ये बहुत अच्छी बात है। कोशिश करते हैं तो सफलता हमेशा मिलती है ना कल्पना जी।
1: और सबसे बड़ी बात है कि आपकी आवाज़ सुनने के लिए हम तरस जाते हैं, इतनी मीठी इतनी अच्छी आवाज़ है आपकी।
0: क्या बात है, और बताइए कल्पना जी आपसे क्या क्या शौक है, आपका बचपन कैसा बीता?
1: एक्चुअल में हमारे पेरेंट्स ने हमेशा रेडियो कुछ कुछ प्रोग्राम सुनते ही रहते थे, तो हम लोगों को भी यदि बचपन में तो इतना समझ नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े हुए हम लोग को लगा कि नहीं अच्छा लगता है गाने सुनना है, या मेज होती है तो ये सब चीजें अच्छी लगने लगती है अपने। तो हमारे घर में हमेशा हमारे पेरेंट्स जो है अम्मा बाबू जी, तो एक्चुअल में तो मैं झांसी की हूँ, और छाया गीत ये त्रिवेणी सभी मतलब हम लोग सखी सहेली इन सब सुनना पसंद करते हैं हम लोग। और हाँ रेडियो हमारा बहुत पुराना पहले जो चलता था, यानी नॉब भी घुमा के और वो नहीं आवाज कम ज्यादा करते, बहुत मजा आता था उसमें। आपको क्या बहुत इजी हो गया है सब कुछ?
0: हाँ आपको सब मोबाइल में भी रेडियो आ गया है, वही भी रेडियो सुन सकते हैं तो सुविधा हो गई, लेकिन वो जमाना वो रेडियो का दौर था, वो जमाना जो रेडियो का दौर था वो बहुत ही अलग था। सबके घरों में बढ़िया बढ़िया रेडियो हुआ करते थे, सब सुबह से लेकर रात तक प्रोग्राम सुनते थे, तो कहना चाहिए मनोरंजन का एकमात्र वही साधन था।
1: वही साधन था, बिल्कुल सही बिल्कुल सही
0: जी। और कल्पना जी आपने अपनी पढ़ाई वगैरह कहाँ से करी?
1: मेरी झांसी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से मैंने एमए सोशियोलॉजी में किया हुआ है।
0: जी जी जी
1: हाँ, मतलब बहुत अच्छे दिन निकले मेरे बचपन, बहुत ज्यादा अच्छा निकला। उसके बाद ठाकुरान भी बहुत अच्छी मिली हमें सबको, सभी लोग मिल देख के इतने शौकीन है, हमारे ससुर तो कैजल के गाने गाते थे,
0: हमारे गाने की महफिल आ जाती है आपके घर में।
1: हाँ, और सभी सिंगर है हमारे देवर वगैरह सब, अभी भी मतलब 60+ हो गए हैं, तब भी वो क्लास जाते हैं, ज्वाइन की हुई है। मेरा बेटा भी बॉम्बे में गिटारिस्ट है, वो भी गिटार बजाता है जॉब के साथ साथ, सबको सीखा। हाँ, और बेटी भी मेरी गुंजा बहुत अच्छा गाती है, बहुत अच्छा।
0: क्या बात है,
1: मैं तो एक्चुअल में 63 इयर्स की हूँ अभी, और मतलब मुझे हर दिन जीने में मैं बहुत अच्छा लगता है कि हर दिन मेरा बहुत अच्छा निकले, इसलिए मतलब अच्छा समय मैं व्यतीत करती। बच्चों की मैरिज हो गई है, दोनों बच्चे उसके बच्चे भी हो गए हैं अभी, मतलब फ्री है एकदम, तो मुझे मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं सबके लिए, तो तुम्हें जो करना है अब करो अपने हिसाब से।
0: यानी कि जिंदगी में आप जो करना चाहती थी वो अपने शौक आप पूरे कर रही हैं, और इस उम्र में भी कर रही हैं, और बहुत एक्टिव हैं जैसा कि आपने बताया, तो बड़ा अच्छा लग रहा है सुनकर के, और आपके प्रतिभा का बहुत सहयोग है, ये बहुत अच्छी भी बात है आपने बताई मुझे, बड़ा अच्छा लग रहा
1: है। मेरी बेटी की मैरिज डे है, वो अपने हस्बैंड को वो 7 दिन का गाना कंगना कंगना डेडिकेट करना चाहती है।
0: हमारी तरफ से भी उनको बधाई दीजिएगा, और कल्पना जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब हम आपको आपकी पसंद का वो 7 दिन का कंगना कंगना करके गाना आपको

0: अपने मर्जी से कौन सा ही गाना सी
1: है। ठीक है, तो मैं आपको अपनी पसंद का ये गीत सुनवाती हूँ।

0: रही हूँ।
1: मैं अनुषा मैं बोल रही हूँ, जयपुर से बोल रही हूँ।
0: अनिल शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली में। और कैसी हैं आप, क्या करती हैं?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं इंश्योरेंस कंपनी में काम करती हूँ। हेलो सहेली प्रोग्राम में कई दिनों से मैं कॉल लगा रही थी
0: जी,
1: आज जाके कॉल लगा।
0: लेकिन क्या बात है, आज आपने कॉल लगाया और लग गया, तो ये आपकी कोशिश रंग लाई है ना अनिल जी?
1: बिल्कुल।
0: तो अनिल जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आप जो जॉब करती हैं इसके अलावा आपके और कौन कौन से शौक हैं?
1: मेरा सबसे ज्यादा जो पसंदीदा शौक है वो मेरा है गाना गाना और गाना सुनना।
0: क्या बात है, तो विविध भारती से आप कौन कौन से प्रोग्राम सुनना पसंद करती हैं, कौन कौन से रेडियो पर प्रोग्राम सुनती हैं?
1: विविध भारती से सबसे पसंदीदा तो सखी सहेली, हेलो फरमाइश,
0: जी जी,
1: साया गीत, ये सब बचपन से सुनते आए हैं, तो बहुत अपना सा फील होता है। आज भी 6 बजे चालू हो जाता है।
0: क्या बात है, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और अच्छा, एक ये बात बताइए कि आपको खेलना पसंद है?
1: बिल्कुल खेलती हूँ।
0: और अभी भी खेलती हैं या बचपन में या स्कूल में आपके कौन से खेल पसंद के होते थे?
1: मैं बैडमिंटन, कैरम, चेस ये पसंद होती हूँ।
0: अच्छा, तो अभी भी आपको समय मिल जाता है जॉब के बाद?
1: निकालना पड़ता है थोड़ा, हेल्दी रहने के लिए ऐसा करना पड़ता है।
0: अच्छा,
1: क्योंकि हम इंश्योरेंस में सब लोगों को यही सिखाते हैं कि अपना प्रोटेक्शन भी रखें और स्वस्थ भी रहें।
0: जी,
1: हेलो सहेली सुन सुन के बहुत अच्छा फील होता है।
0: क्या बात है, आप हमारे विविध भारती के जितने भी प्रोग्राम हैं उनको भी आप सुनती रहिए इसी तरह। और आपको आज हम कौन सा गाना सुनवाए?
1: आज आप मेरी पसंद का गाना सुनवाइए, नाम गुम जाएगा, सितारा फिल्म से है।
0: अनु जी, आपने इतना प्यारा गाना बताया है नाम गुम जाएगा, तो मैं चाहती हूँ कि आपने कहा कि आपको गाना पसंद है, तो क्यों ना आप एक दो लाइन हमारे लिए गा दीजिए?
1: जी बिल्कुल। नाम

0: बोल रही हूँ भोपाल से।
1: बाली जी, आपका हेलो सहेली में बहुत बहुत स्वागत है। तो बताइए, आप भोपाल से हैं तो वहाँ का कैसा मौसम है इस समय?
0: मैम, इस समय तो गर्मी है और बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम यही है कि गर्मी की वजह से सारा लोग जो है ना परेशान हो जाते हैं बहुत ही।
1: गर्मी से बचने के लिए आप क्या उपाय अपनाती हैं ये बताइए मुझे।
0: गर्मी से बचने के लिए देखो, प्रतिदिन तो सब स्नान करते ही हैं, ऊपर से जैसे ठंडा कुछ, जैसे नींबू की सिकंजी है या रुआबजा है या दही की लस्सी है, ये पीते हैं सब, ग्लूकोज है घोल के, बस इसी वजह से सबको तढ़ाई मिलती है।
1: और आम का पन्ना भी बना,
0: जैसे आम की अगर आपको लस्सी बनाना है तो आप मिट्टी में मिक्स करके और बढ़िया बर्फ वगैरह डाल के, जो आप जो डाल के बढ़िया पीजिए, अच्छा लगता है। मैम, मैं अपने परिवार का नाम लेना चाहती हूँ अगर आपकी इजाज़त हो।
1: बिल्कुल बिल्कुल, लीजिए अपने परिवार का नाम।
0: मैम, मेरे हस्बैंड का नाम विकास अग्रवाल है और मैं उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामना देती हूँ रेडियो के जरिए। और मेरी सास का नाम सुमन है, मेरे ससुर का नाम महेंद्र है और मेरे देवर का नाम विशाल है और मेरे जो मायके में मेरे पापा का नाम धनराज कुकरेजा है, मेरी माँ का नाम फूला है और मेरे भाई का नाम अमित सुमित और भाभी का नाम संतोषी और उनके बेटे का नाम शिवा। ये है मेरा समस्त परिवार।
1: आपके परिवार के नाम जानकर बहुत अच्छा लगा। अपने पतिदेव को हमारी तरफ से, विद्यार्थी परिवार की तरफ से जन्मदिन की शुभकामनाएं दीजिएगा। आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे?
0: राम लखन फिल्म का गाना सुनना है और वो है 1 2 4 माय नेम इज लखन।
1: चलिए सुनिए आपकी पसंद का ये गाना।

0: से बोल रहे हैं
1: जी। आपका नाम क्या है?
0: जी मेरा नाम आशिया राज है।
1: आशिया राज बिहार में है आप रहती, तो बिहार के बारे में कुछ बताइए।
0: बिहार अच्छा ये राज्य है, यहाँ पे अच्छा पढ़ाई होता है।
1: अच्छा अच्छा बिहार के जो खान पान है, जो वहाँ की चीजें स्वादिष्ट बनती हैं, उनमें से आपको क्या सबसे ज्यादा पसंद आता है बिहार का?
0: ये सबसे ज्यादा पसंद आता है दाल चावल, गोलगप्पे खाना पसंद है।
1: क्या बात है आपसे। चलिए अच्छा जी बताइए कि आज आप कौन सा गाना हेलो सहेली में सुनना पसंद करेंगी?
0: हिना फिल्म का है।
1: हिना फिल्म का
0: और गाने का बोल है मैं हूँ खुश रंग।
1: क्या बात है, बहुत प्यारा सा गीत आपने पसंद किया है। तो चलिए आपको सुनाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: सहेली मैं वर्षा जहाँ बोल रही हूँ भोपाल से। वर्षा जहाँ आपने बारे में कुछ बताइए, घर पर ही रहते हैं अभी तो गर्मी की छुट्टी है, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है यहाँ पर। विविध भारती सुनते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है, सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं, ये तो सहेली और ये तो फरमाइश ये सब ज्यादा अच्छे लगते हैं, आज के ईमान सब कार्यक्रम सुनती हूँ।
1: तो दर्शना जी आज आप क्या सुनना पसंद करेंगे, कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे?
0: हमारे दादाजी की पसंद का, जैसे जब भी फोन लगाते हैं तो वो कहते हैं रेडियो जैसे हम लोग सुनते हैं
1: जी,
0: तो वो बोलते हैं ना मेरी पसंद का भी गाना सुनो कभी, तो उनकी फरमाइश आज
1: बिल्कुल बताइए अपने दादाजी की पसंद।
0: वादिया मेरा दामन अभिलाषा फिल्म का गाना है।
1: दर्शन जी सुनते हैं आपकी पसंद का, आपके दादाजी की पसंद का वादिया मेरा दामन।

0: से कि बधाई इनामदार बोल रही हूँ।
1: शिल्पा जी, आपका हेलो से मिली ये फोन लगाने तो आपको कैसा लग रहा है?
0: मुझे बहुत खुशी हो रही है हेलो सहेली में आकर।
1: जी, अपने बारे में कुछ बताइए कि आप क्या करती हैं?
0: जी, मैं एक सेवानिवृत्त सीनियर सिटीजन हूँ और जूनियर कॉलेज में अध्यापिका रह चुकी हूँ।
1: तो आप किस क्लास के बच्चों को पढ़ाती थी?
0: मैं जूनियर कॉलेज में 11वीं-12वीं क्लास में पढ़ाती थी। मराठी मेरा सब्जेक्ट था और ज्योग्राफी भी मैं सिखाती थी। अब मैं रिटायर होकर 15 साल हो गए हैं मुझे, तो अब मैं खाली वक्त मुझे बहुत मिलता है तो मैं विविध भारती सुनती हूँ, क्योंकि बच्चे जब काम पर चले जाते हैं तो अकेलापन विविध भारती के जरिए मेरा कम हो जाता है और बहुत खुशी मिलती है।
1: तो हमारे विविध भारती के बहुत सारे प्रोग्राम आप सुनती होंगी, तो आपको कौन कौन से प्रोग्राम अच्छे लगते हैं?
0: मुझे पहले सखी सहेली और हेलो सहेली तो अच्छे लगते ही है, और साथ ही साथ भूले बिखरे गीत, वंदे मातरम, त्रिवेणी, छाया गीत, ये सभी प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद आते हैं।
1: क्या बात है,
0: थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ, ललित लेख, कथा, प्रासंगिक कविता मराठी में लिखती हूँ, जो कभी कभी न्यूज पेपर और मासिक पत्रिका में छप भी जाता है।
1: अच्छा,
0: हाँ,
1: ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लिखती हैं। और तो आप हमें आज कौन सी कविता की कुछ पंक्तियाँ सुना सकती हैं?
0: सखी हेलो सहेली, कभी उलझा तो कभी सुलझा देती हो जीवन की हर पहेली, कभी तो नित नई नवेली, किशोरी युवती से लेकर प्रौढ़ा वृद्धा की हर मुश्किल का हल क्यों ही पल में कर देती हो सफल, तभी तो तुम लगती हो सबको प्यारी न्यारी दुलारी हेलो सहेली। ज्ञान विज्ञान साहित्य समाज उत्सव संस्कार से लेकर गीत संगीत कला क्रीड़ा तक करवाती हो सभी का दिलकश मनोरंजन, साथ ही साथ मिलता है उस बोधन का अंजन। मंजरी जी,
1: जी
0: अनुश्री प्रस्तुत हेलो सहेली अने स्नेह का दीप, गुणों की आरती, वाणी में ममता, आपस में मौज मस्ती और मंजूल की सरलता।
1: आज आप कौन सा गाना पसंद करेंगे सुनना?
0: मिस मेरी चिंता, सच्ची रे सुन बोले पपिया उच्च पर।
1: सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का मिस मेरी चिंता।

करते करते पता ही नहीं चला बातों और गीतों ने समा बांध दिया। अब कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। चलते चलते आपको जानकारी दे दें, आपके कॉल की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक की जाती है। आप हेलो सहेली के लिए इन बताए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वो नंबर है 4002466। मुंबई का एसटीडी कोड है 022 यानी 4002462। एसटीडी कोड 022। अब दूसरा नंबर भी नोट कीजिए, फोन नंबर है 2867-0288। मुंबई का एसटीडी कोड है 022 यानी 2867-0288। एसटीडी कोड है 022। तो बस मंगलवार को लगाइए इन नंबर पर कॉल और अपनी नई सहेली से कीजिएगा ढेर सारी बातें। हेलो सहेली प्रोग्राम प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है। तो सुनना याद रखिएगा, जिन बहनों की कॉल आज नहीं लग पाई वो निराश नहीं हो, अगली बार प्रयास कीजिएगा। जिनकी कॉल आज लग गई है उनसे अनुरोध है कि अगले 2 मिनट तक कॉल नहीं लगाए। हमारे सखा भाइयों से विनती है कि वे हेलो सहेली में कॉल नहीं लगाए क्योंकि लाइन व्यस्त हो जाती है। हेलो सहेली कार्यक्रम से जुड़ा लेते हुए आपको ये बता दें कि आपने आज का सफर तय किया मंजरी वर्मा के साथ। हमें सहयोग दिया रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण गंग ने और संपादन सहयोग नमिता टिकोड़े ने। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। तो अब दीजिए कार्यक्रम से अनुमति। नमस्कार सखियों के दिल की सुबह। हेलो सहेली।

सरकार और उसके माँ बाप की हालत से उतारा जाने लगा। इस अर्थ ने बड़ी तेजी से अपना काम शुरू किया, जिसके नतीजे में इन लोगों को यकीन हो गया कि रामलाल ने कम दहेज दिया। हमारे समाज में बुनियादी जरूरतों को हासिल करना मुश्किल हो जाए और इस पर पाबंदी लग जाए तो वही सामाजिक और नैतिक बुराइयां सर उठाना शुरू कर देती हैं। आज शैतानी वसवसे, नाजायज ख्वाहिशात और वाहियात रस्मों रिवाज ने शादी को बहुत मुश्किल और पेचीदा बना दिया है। दहेज की नाकाबिले बर्दाश्त फरमाइशें एक गरीब इंसान दहेज अदा नहीं कर सकता। दहेज की अदायगी न होने की सूरत में कितने ही गरीब खानदानों में शादियां रुक जाती हैं, बारातें दुल्हन की चौखट चढ़ाकर रुक जाती हैं और कितने ही माँ बाप अपनी बदनामी की डर से आत्महत्या भी कर लेते हैं या फिर लड़कियाँ खुद को बोझ समझकर मौत के मुंह में चली जाती हैं।

लड़कों के चेहरे और होठों पर मुस्कुराहट तो रहती थी, मगर दहेज के नासूर ने उसके सीने में गहरे जख्म कर दिए थे। अपने दुख को अपने तक ही रखने और दुनिया को दिखाने के लिए वो सामने सामने मुस्कुराती रहती थी। वो दुनिया को दिखाती थी कि इन हालातों में भी वो खुश है। हालात से समझौता करके वो

के नौजवानों की मानसिक गिरावट पर अफसोस हो रहा था। आज का हर नौजवान किसी दहेज हासिल करने के लिए ही पैदा होता है। वो सोचती, अगर किसी के पास अच्छा दहेज देने की हैसियत नहीं है तो क्या वो अपनी बेटी की शादी करने के बारे में न सोचे। राधा के ससुराल वालों का दिमाग इस कदर बिगड़ चुका था कि उन्होंने राधा को मायके भेजने तक का मंसूबा बना

रोती हुई अपने मायके चली गई। गरीब माँ बाप अपनी बेटी का ये सदमा बर्दाश्त न कर सके, फिर एक के बाद एक दोनों इस दुनिया को छोड़ गए और राधा दर बदर की ठोकरें खाने के लिए जिंदा रह गई। जिंदगी ने उसे नाकामियों और मजबूरियों के सिवा कुछ नहीं दिया था। वो खुद को धरती का बोझ समझने लगी। उठ जाए यहाँ से, मुझे दुकान खोलनी है। दुकानदार का गुस्सा निकालकर ताले में लगाने लगा। दुकान के सामने लेटी राधा ने एक पल के लिए कुछ सोचा, फिर दूसरे ही पल उठ खड़ी हुई। उसने अपनी पोटली बगल में दबाई और एक तरफ झटकने लगी। उसके दुबले पतले सूखे हुए जिस्म पर मैल की परत इतनी गहरी थी कि उसका असली रंग छुप गया था। उसकी आंखें अंदर घुसी हुई थी और सिर के बालों में भी मैल जमा था। चलती हुई उसकी टांगें और पूरा शरीर कांप रहा था। दूर से देखने पर वो इंसान नहीं, कोई और ही मखलूक लगती थी। उसकी कोई मंजिल नहीं थी, कोई ठिकाना नहीं था। वो एक ऐसे मुसाफिर की तरह थी जिसे अपनी मंजिल तक नजर नहीं आती। राधा जिस इलाके में जाती वहाँ की भिखारी उसे अपने इलाके में जाने को कहते। वो वहाँ से निकल जाती। दूसरे भिखारी शायद इस वजह से उससे जलते थे कि वो उनके मुकाबले में ज्यादा काबिल रहन लगती थी। दोपहर होने तक वो करीब 2 किलोमीटर का फासला तय कर चुकी थी। वो बांद्रा के इलाके में दाखिल हुई। रास्ते में कई जगह उसने आराम भी किया था, लेकिन अब तक किसी ने उसे एक पैसा भी नहीं दिया था। वो सुबह से भूखी थी, अब उसकी भूख बना चुकी थी। थक हार कर वो फुटपाथ के सायेदार हिस्से में बैठ गई। खत्म हुई तो उसने मजबूरी में हाथ फैलाया। धीरे धीरे उसके हाथ उठाने की ताकत भी नहीं रही और उसका हाथ जमीन को छूने लगा। उसने अपने सामने एल्यूमिनियम का खाली कटोरा रख दिया। लोग अफरा तफरी में उसके पास से गुजर रहे थे, लेकिन किसी को भी उसकी खाली पर रहम नहीं आया। सच तो यह है कि किसी ने उसकी तरफ देखा ही नहीं।

का सिस्टम की आवाज सुनाई दिया। उसे ऐसा लगा जैसे उसके तन बदन में खून की रफ्तार तेज हो गई हो। देखते ही देखते उसका कटोरा सिक्कों से भर गया। सभी अपने आप में गुम थे। एक साहब अपने कुत्ते के साथ उसके करीब से गुजरे। उन्होंने एक फुटपाथ पर बैठी हुई भिखारन को देखा और आगे बढ़ गए। अलबत्ता उसके कुत्ते ने उसे सूंघा और फिर

विश्वास से राधा की आंखों में आंसू आ गए। मैं थोड़ी देर के लिए बैठी हूँ, फिर छूट जाऊंगी। अगर मैं भीख मांगेगी तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा इलाका है। कुछ हंसते करते भिखारी ने शिक्षक की कटोरी को देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, तुम मेरे इलाके से होते हुए भी शिक्षक थे, तुम राजा चिल्लाना चाहती थी लेकिन चिल्ला न सकी। भूख और प्यास ने उसे निश्चित कर दिया था, उसकी आवाज मुझे नहीं दे सकी। निराल होकर जमीन पर लेट गई। भूख और प्यास ने उसकी जिंदगी का खात्मा कर दिया। गाड़ी तेज रफ्तार से अपनी मंजिल की तरफ दौड़ रही थी। सीटी की आवाज फिजा में गूंज रही थी। गाड़ी लगातार सीटी बजा रही थी। अब गाड़ी लड़की के बिल्कुल करीब आने वाली थी। इससे पहले कि लड़की गाड़ी की छवि से थी, अचानक किसी ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। लड़की ने देखा कि एक अजनबी शख्स जिसकी उम्र लगभग 50 साल होगी, उसने उसे खींचा है। लड़की ने सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा, कौन हो तुम? मेरा नाम सीधे पांडे है, वैसे लोग मुझे संत बाबा के नाम से जानते हैं। लड़की ने पूछा, तुमने मेरी जान क्यों बचाई? एक इंसान होने के नाते मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। तुम्हारे कर्तव्य और तुम्हारी इंसानियत से मुझे कोई लेना देना नहीं, लड़की ने ऊंची आवाज में कहा। मुझे जीने से कोई दिलचस्पी नहीं, मैं मरना चाहती हूँ।

शख्स ने पूछा, ये मेरा अपना मामला है, मुझे कुछ पर कोई अधिकार नहीं। लड़की ने जवाब दिया, बड़ों से इस तरह की बातें नहीं करते बेटी। संत बाबा ने प्यार भरे लहजे में कहा, ईश्वर ने तुम्हें जिंदगी दी है, जिंदगी लेने का अधिकार भी उसी का है। तुम अपने आप को मौत के हवाले नहीं कर सकते। जिंदगी में दुख और परेशानी आती ही रहती है, हालांकि समझौता करना पड़ता है। आखिर वो कौन सी मजबूत है कि तुम आत्महत्या करना चाहती हो? संत बाबा ने पूछा। मैंने कह दिया ना कि मैं आत्महत्या का कारण नहीं बताऊंगी। मैं जानता हूँ हम दोनों एक दूसरे की अजनबी हैं, मगर मैं फिर भी जानना चाहता हूँ कि वो कौन सी मजबूरी है जो तुम्हें आत्महत्या करने पर मजबूर कर रही है। संत बाबा ने कहा। लड़की ने एक नजर संत बाबा के चेहरे पर डाली और दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाकर कूट कूट कर रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसकी गालों पर फिसल रहे थे। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरा नाम रुक्मणी है, मैं एक अपाहिज अनाथ लड़की हूँ, बूढ़ी मौसी के सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। चंद पल गुजरने के बाद रुक्मणी ने कहा, स्कूल में लड़के और लड़कियां मुझे सताते हैं, मुझे धरती का बोझ कहते हैं। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा, कुछ दिनों से मैं महसूस कर रही हूँ कि सचमुच ये धरती का बोझ बनती जा रही है। अपनी बूढ़ी मौसी पर तो मैं पहले ही बोझ बन चुकी हूँ, अब उनके बूढ़े कंधों पर और ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहती, इसलिए मैंने आत्महत्या का इरादा कर लिया है। नहीं रुक्मणी नहीं, तुम आत्महत्या नहीं करोगी, संत बाबा ने कहा। जिंदगी एक खूबसूरत गीत है, इसे हर इंसान को आखिरी दम तक गाना पड़ता है। मैं जानता हूँ तुम्हारा एक पैर पोलियो का शिकार है, लेकिन तुम्हारा जहन मफलूज नहीं हुआ है। तुम अपने आप में आत्मविश्वास पैदा करो। अगर तुम्हारी मेहनत और लगन में सच्चाई है तो तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी और दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकेगी। तुम पढ़ने लिखने में जी लगाओ, तुम इंश्योर

सड़क पर पहुंच जाए। सड़क के करीब अपनी मौसी को देखकर उसे सुकून मिलता और यूँ महसूस होता जैसे शहर की हलचल भरी फिक्र से निकलकर गांव के सुकून भरे माहौल में अपनी मौसी के पास पहुंच गई हो। स्कूल में पढ़ाई के दौरान उसे वक्त गुजरने का एहसास नहीं होता था। किताबों के दिलचस्प सबक उसका ध्यान बताए रखते, लेकिन जैसे ही तकलीफ का वक्फा होता वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगती और ये अकेलेपन के पल बेहद परेशानी का सबब बनते। छुट्टी की घंटी बजते ही वह दूसरे बच्चों की तरह दौड़ते हुए बच्चों की तरह खेल कूद में हिस्सा लेना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। छुट्टी होने में कुछ देर बाकी थी कि टीचर ने उसे जाने की इजाजत दे दी, क्योंकि टीचर अच्छी तरह समझती थी कि छुट्टी के वक्त बच्चों के हुजूम में वो चल नहीं सकेगी। क्लासरूम से निकलकर वो कुछ ही दूर पहुंची थी कि छुट्टी का घंटा बज उठा और उसके साथ ही कमरों से बच्चों का सैलाब उमड़ पड़ा। तमाम बच्चे धक्का मुक्की करते और एक दूसरे को गिराते हुए आगे बढ़ रहे थे। रुकमणी भी बच्चों के इस मेले में गिरती पड़ती अपनी बेजान टांग को घसीटते हुए आगे बढ़ रही थी। वो सड़क पर अकेली खड़ी इधर उधर देख रही थी। सड़क पार करना भी उसके लिए मुश्किल काम था। सड़क पर ट्रैफिक था और भीड़ में वो सड़क पार नहीं कर सकती थी। इसी दौरान उसकी नजर अपनी मौसी पर पड़ी। सुखमणी की मौसी उसके लिए फरिश्ते की हैसियत रखती थी। हर रोज वही उसे सड़क पार करवाया करती थी। आज भी उसने सुखमणी को वहाँ खड़ा देखा तो करीब आते हुए बोली, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। रुकमणी की मौसी ने उसके दाएं कंधे पर अपना हाथ रखा और रुकमणी ने उनके बाएं कंधे पर अपना हाथ रख दिया। सड़क की दूसरी तरफ पहुँच कर रुकमणी और उसकी मौसी अलग हो जाती। रुकमणी बेहसासियों के सहारे चलने लगती। रुकमणी को उन लोगों से सख्त नफरत थी जो उसे लंगड़ा कर चलते हुए देख कर घूरते थे या रहम की निगाहों से देखते थे। उसके लिए एहसास बहुत दर्दनाक था। जब वो अपनी टांग को घसीटते हुए आगे बढ़ती तो लोग उसे देखते रहते। शुरू शुरू में जब वो स्कूल आती थी बच्चे उसके करीब आकर देखते थे कि उसकी टांग में क्या खराबी है। ऐसे मौकों पर वो जमीन में

महसूस किया कि रुक्मणी की आंखें खुशी से चमक रही है। ठीक है, रुक्मणी ने कहा, मैं आपके इन ख्यालों पर गौर करूंगी। इसके बाद रुक्मणी की जिंदगी में एक नया इंकलाब आया। वो रात दिन पढ़ाई

रुक्मणी पढ़ने लिखने के बारे में संत बाबा से मशवरा लेने लगी। संत बाबा हर मोड़ पर रुक्मणी का हौसला बढ़ाते रहे। संत बाबा सिर्फ रुक्मणी का ही नहीं बल्कि गरीब बच्चों के दिलों में भी शिक्षा का बीज जलाते थे। उनकी दिली तमन्ना थी कि देहात गांव और शहर का कोई भी बच्चा अनपढ़ न रहे, गरीब बच्चों को भी शिक्षा हासिल करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने गरीब बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग क्लास शुरू की थी और रुक्मणी स्कूल के साथ साथ संत बाबा की कोचिंग में भी पढ़ने लगी। एक दिन संत बाबा ने क्लास के बच्चों से कहा, प्यारे बच्चों, पढ़ने लिखने में अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। सिर्फ किताबों की मदद काफी नहीं होती, दिमाग से जितना काम लोगे उतनी ही उसकी ताकत बढ़ेगी और याददाश्त भी मजबूत होगी। हर विद्यार्थी को चाहिए कि किसी पैराग्राफ या विषय को खत्म करने के बाद उसे अपने शब्दों में बयान करे। पढ़ाई का मतलब समझना है। सोचे की तरह रटना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि अगर कुछ लाइनें भूल जाओ तो पूरा सबक भूल जाओगे। प्यारे बच्चों, तुम्हें पढ़ने के लिए अच्छा इंसान बनना है। तुम अपने माँ बाप की तमन्नाओं का केंद्र हो, उनकी आंखों की ठंडक हो। देश और कौम की आशाएं तुमसे है। तुम पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। संत बाबा के इस बयान में माँ बाप का नाम सुनकर रुक्मणी रंजिदा हो गई। उसने महसूस किया, मेरे तो माँ बाप नहीं है, मैं किसका नाम रोशन करूँ? मेरे बाप जिंदा है या नहीं मुझे मालूम नहीं। सुना है वो दहेज का तलबगार था, माँ पर जुल्म करता था और मेरी माँ वो जुल्म सहती थी। कहते हैं देश भर में यही हो रहा है, मेरी माँ भी जुल्म सहते सहते दुनिया से चली गई। माँ कितना प्यारा शब्द है, माँ भगवान का दूसरा रूप होती है। मैंने तो अपनी माँ को देखा ही नहीं, लेकिन मैंने अपनी मौसी की आंखों में अपनी माँ की तस्वीर देखी है। कितनी प्यारी है मेरी माँ, भोली भाली।

और वही मेरी बापू है। मैं पढ़ लिख कर अपनी मौसी का नाम रोशन करूंगी। अब रुक्मणी की पढ़ाई की हालत बहुत बेहतर हो गई थी। वो हर क्लास में अच्छे नंबरों से पास होती थी। एक दिन उसकी तस्वीर राज्य भर में छपने वाले अखबारों में छप गई, क्योंकि रुक्मणी ने SSC में टॉप किया था। रुक्मणी वो लड़की थी जो पूर्ण राज्य में अव्वल आई थी। शहर के एक अच्छे समाज सेवक ने एक अनाथ अपाहिज लड़की को गोल्ड मेडल देने का ऐलान किया था, और फिर वो दिन भी आ गया। हॉल विद्यार्थियों से खचाखच भरा हुआ था। मेहमान खास के लिए बनी जगह के दाएं तरफ शहर की मशहूर हस्तियों की गैलरी थी। मुकर्रर वक्त पर अनाउंसर ने स्टेज पर आकर समाज सेवक से दरखास्त की कि वे विद्यार्थियों को अपनी टीम की मशवरे दें। लोगों ने तालियों से समाज सेवक का स्वागत किया। उन्होंने स्टेज पर आकर कहा, आज के इस जलसे में शरीक होते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि एक अनाथ अपाहिज लड़की ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। रुक्मणी एक होनहार लड़की है जिसने ये साबित कर दिया कि एक अपाहिज इंसान भी अपनी मेहनत और लगन से तरक्की की मंजिलें तय कर सकता है। चंद पल रुककर उन्होंने कहा, लोग कहते हैं कि रुक्मणी सड़क पर रहती है, मैं ऐसे लोगों से नफरत करता हूँ। ये सड़क पर रहना या शहर में रहना क्या होता है? सब दुनिया के बनाए हुए उसूल है। ईश्वर ने तो सिर्फ दो ही प्रकार के लोग बनाते हैं, और मर्द। जिनमें इंसानियत होती है वही लोग महान होते हैं। फिर उन्होंने कहा, और मैं यहाँ मौजूद तमाम विद्यार्थियों को मशवरा देता हूँ कि पढ़ाई में दिलचस्पी लें और रुक्मणी की तरह कोशिश करें। कोशिश जरूर रंग लाएगी। अब मैं आखिर में रुक्मणी को माइक पर आने की दावत देता हूँ। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। बैसा

संभालते हुए कहा, प्यारे सज्जनों, प्यारे भाइयों और बहनों, आज ये मेडल लेते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन मैं इस गोल्ड मेडल के हकदार नहीं हूँ। हकदार तो वो महान हस्ती है जिन्होंने मुझे मौत के मुंह से निकाला, जीने का तरीका सिखाया और मेरे दिल में पढ़ने लिखने का दिल चलाया। मैं चाहती हूँ कि ये मेडल मेरी शहीद को दिया जाए जिन्हें हम संत बाबा कहते हैं। पूरा हॉल खामोश हो गया। बच्चे और बड़े एक दूसरे को देखने लगे। फिर रुक्मणी ने कहा, मैं अपने संत बाबा से विनती करती हूँ कि वे स्टेज पर आए और समाज सेवक से ये मेडल हासिल करें। तालियों की गूंज के बीच संत बाबा स्टेज पर पहुंचे और उन्होंने कहा, प्यारे बच्चों, प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं रुक्मणी को बधाई देता हूँ कि उसने गोल्ड मेडल हासिल किया है। रुक्मणी एक होनहार लड़की है, उसे पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। सिर्फ माँ बाप का ही नहीं बल्कि अपने स्कूल का नाम भी रोशन किया है। मैं तमाम बच्चों को मशवरा देता हूँ कि वे भी पढ़ने लिखने में दिलचस्पी लें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। चंद पल बाद उन्होंने कहा, रुक्मणी एक मासूम भोली भाली लड़की है, उसने कहा कि ये मेडल उसके सुधीर को दिया जाए। लेकिन नादान बच्ची, मैं तो एक टीचर हूँ। एक टीचर अपने विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा देता है ताकि ये पढ़ लिख कर अपना भविष्य संवार सके। जब कोई बच्चा पढ़ लिख कर कामयाबी हासिल करता है तो बच्चे के माँ बाप के साथ साथ टीचर को भी खुशी होती है। मुझे बेहद खुशी है कि रुक्मणी पढ़ लिख कर इस मेडल की काबिल बनी है, इसलिए ये मेडल रुक्मणी को ही दिया जाए। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। बच्चों और बड़ों के चेहरों पर मुस्कान फैल गई। दूसरे ही पल समाज सेवक माइक पर आए और बोले, मुझे खुशी होगी ये मेडल संत बाबा के पवित्र हाथों से ही रुक्मणी को दिया जाए। और एक बार फिर तालियों से गूंज उठा। संत बाबा ने मुस्कुराते हुए रुक्मणी के सिर पर हाथ फेरा और अपने पवित्र हाथों से उसे मेडल दे दिया। एक बार फिर पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज

historien, og under den

mamie,

की है। मेरी लब्जों में तेरे लिए नमी घोल रखी है, तेरी एक झलक को तरसती है ये निगाहें। जरा करीब आकर तो देख,

अच्छे पाया। बिना वस्तुओं के सब कह जाने का ये फन कहाँ से आया? हम तो समझते थे खामोशी बस खामोशी होती है, पर तूने इशारों इशारों में दिल की

की मुलाकात में लगा जैसे मिट गई हो दूरियां। उससे मिलकर यूं लगा जैसे अपना ही कोई मिल गया। भीड़ में चलते चलते अचानक हम सफर में जैसे हाथ को थाम लिया।

सी हो जाती है, मेरे दिल की धड़कनें भी धीमी सी हो जाती है। माथे की बोलियां

इजाजत नेहा अगरकर देसाई को नमस्कार।

0: का चाप नहीं हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई, और फिर मैंने भरी धर्मेंद्र सिंह जो तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सेलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब एंड
1: नरगिस्ती
2: मेहमान और कार्यक्रम में अपने आप में अनोखे
1: आज के फनकार विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की
2: विविध भारती संगीत मनोरंजन और संस्कृति का संगम
3: कार्यक्रम में आज हमने कुछ रहने प्रकृति पर आपकी रुचि नहीं आई सुनते हैं शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में हरसरत जयपुरी का लिखा ये गीत स्वर लता मंगेशकर का है और ये फिल्म है हरियाणवी और

नारायण को अभी आप सुन रहे थे जिनका नाम था सातवां आसमान। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने गए पुराने। इसका शेष भाग हम आपको सुनवाएंगे हिंदी समाचारों के बाद।

में से एक है, इसलिए एज ऑफ द सर्जन साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बना है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी है। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस

to do that.

उनका ये गीत था पर्वतमस्थल और अरिजीत सिंह की आवाज़ें थी ईश्वर तमिल के बोल जीत तमिल लिखा था। आपने फिल्म की आकाशवाणी जमशेदपुर भारती केंद्र और इस समय सुन रहे हैं फिल्म संगीत का।

Now,

आजीविका योजना के अंतर्गत पांडे सिंह ने कहा राज्य का समावेशी विकास मॉडल

2024 का मतलब सिक्किम है, क्योंकि मतलब का नाम है उनका तथा 2023 का मतलब सिक्किम का नाम से मैपिंग करना एक महत्वपूर्ण विषय है या तैयार प्रोसेस में। कोई भी अन्य डॉक्यूमेंट उनका डिप्लोमेशन का साथ में देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। झारखंड में अभी तक लगभग 75% मतलब का मैपिंग हो गया। मतलब का सिक्किम 30 तारीख से सभी झारखंड में सभी बूथों पर वो प्रकाशित होगा। किसी का नाम अनमैप होगा तो तुरंत आपको DLA से संपर्क करते हुए उनका नाम करना पड़ेगा।

0: आने वाले हैं ये भी बता दे रहे हैं, जब जब लैब करते हैं उनके घर के बाहर मौसम नहीं है, उनको ये भी बोलते हैं।
1: दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत

निश्चित रूप से ज्यादा था। अभी जो देख रहे हैं उसमें हितेश्वर वाली संख्या काफी कम है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और जहाँ तक तैयारी की बात है उससे संबंधित जो भी निश्चित की जरूरत है वो सारी व्यवस्था सदर अस्पताल में कर दी गई। इससे मरीजों को किसी भी तरह का हीट स्ट्रोक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।

सिंह हमें दिया है, सर मोहम्मद रफीका है, शब्दकार शैलेंद्र जी और संगीतकार हैं

शनिवार दिन में 2:30 बजे।

एक संदेश आप सुन रहे हैं, जो बड़े लोग हैं,

इससे पहले हम आपको बता दें, ये आवाज मोहम्मद रफी की थी जिनका नाम था साजन पिनाथ सुहागन। रचना इंदिवर की थी और फिल्म बनाई थी उषा

लगता है उसको बिना नहाए ड्यूटी पर आता है। इसीलिए हमारे अस्पताल में कोई मरीज नहीं आता।

से हैं आप महाशय? भेषा बीमारी? कहाँ? किधर? कंपाउंडर? आपको कुर्सी पर बैठाओ, मेरा मतलब है कुर्सी लाओ आपके लिए।

0: सीरियस बीमार और चार लाख सीरियस बीमार
1: है। ऐसा लगे ना सबको ठीक कर देंगे।
0: हमारी दवा खाकर जो भी गया वो वापस नहीं आया।
1: मेरा मतलब है फिर वो कभी बीमार नहीं पड़ा क्या?
2: अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैं सबको एक साथ लाऊं या एक एक करके लाऊं?
1: एक एक करके लाइएगा।
2: हाँ ठीक है, हाँ तो मैं फिर लेकर आता हूँ।
1: अरे कंपाउंडर रोज मक्खी मारा कर, अरे ये शगुन तो बहुत ही अच्छा होता है।
2: डॉक्टर साहब मैं अंदर आ जाऊँ?
1: आइए आइए आइए आइए।
2: डॉक्टर साहब
1: जी,
2: ये मेरी सबसे बड़ी लड़की है लावंगा लता, उम्र 23 बरस है।
1: माफ कीजिएगा देवी जी, आप बताने का कष्ट करेंगी कि आपको क्या होता है?
2: बाप
1: रे बाप, तो काटने को दौड़ते मुनी बाबा।
2: घबराने की कोई बात नहीं है, इसे जरा प्यार से बेटी कहकर पुकारिए, सभी ठीक और बराबर जवाब देगी।
1: अच्छा बेटी घबराओ नहीं, क्या होता है तुमको?
3: मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगी, पुरुषों के खिलाफ बगावत करूंगी। आज तक जितने सुन पुरुषों ने स्लोगन किए हैं उन सबका दिन दिन कर बदला लूंगी। पुरुष खाना बनाएंगे और नौकरी पर जाएंगे, पुरुष चूड़ियाँ पहनेंगे और खीर उठाएंगे। भारत की नारी जिंदाबाद, पुरुषों का बायकॉट हो, पुरुषों का सर्वनाश हो।
1: इस प्रकार के वाचन रोज घर में करती रहती है। मुनी बाबू इनको बहुत सीरियस बीमारी हो गई है। आजकल ये बीमारी फ्लू की तरह फैली हुई है। इस बीमारी को लवेरिया कहते हैं।
2: लवेरिया?
1: जी हाँ लवेरिया।
2: अच्छा है तो डॉक्टर बाबू इसका कोई इलाज?
1: इलाज यह है, मैं तो हर एक तरह के इलाज करता हूँ। एलोपैथिक, होम्योपैथिक, यूनानी, आयुर्वेदिक।
2: इसमें डॉक्टर साहब जो सबसे पावरफुल जरा सस्ता इलाज कौन सा है?
1: तो सुनिए, सूरज की किरण 5 तोला, हवा का झोंका 4 माचा और गुलाब की खुशबू 3 रस्सी, इन तीनों को काले पत्थर के तेल में मिलाकर गोली बनाइए और जब मूसलाधार बारिश होती हो तो मैदान में रख कर सुखा लीजिए। सूखने के बाद 2 गोली सोने के बाद और 2 गोली सुबह उठने से पहले 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगी।
2: जी तो हो जाएगी
1: जी।
2: पर ये सब वस्तुएं गुलाब की खुशबू सूरज की किरण मिलेगी कहाँ से?
1: नहीं मिलेगी तो इसको एंटी लेवेरिया का इंजेक्शन दो, ठीक हो जाएगी। समझे? जाइए कल दूसरे पेशेंट को लाइएगा।

0: दोस्ती को दिखाई थी, मंगल नवे घर में काम होने से जीतने के चांस बढ़ाए थे, पर राहु की दशा खराब होने से हार गया। डॉक्टर, कल रात को मैंने एक सपना देखा। उसने देखा कि कुएं के पास चारपाई बिछी है, तो कुएं का तो गोल होने की वजह से शून्य हुआ और चारपाई का चौका हुआ। हाँ तो बताओ बताओ डॉक्टर, होता स्कूल खेल दूं क्या? मैं अभी भी रेल की किताब लेकर आया, आप जाइए नहीं डॉक्टर साहब, देखिए जाइए, मैं
1: मुनि बाबू, इसको कैम्बुलेंसर हो गया है।
0: अच्छा,
1: ये रोग बिल्कुल कैंसर के जैसा होता है। इसका एक ही इलाज है कि इसके सर पर बर्फ से भरा हुआ मटका रखिए, ताकि इसका दिमाग बिल्कुल ठंडा रहे। जाइए, कल दूसरे मरीज को लाइएगा।
0: अच्छी बात है।

0: तो क्रिकेटिया हो गया है, बीमारी बिल्कुल पायोनिया जैसी है। उसके मुंह में सुबह से शाम तक 24 घंटे क्रिकेट की बदबू आती है।
1: अच्छा, तो इसका इलाज जान
0: सकता है? इलाज बड़ा सीधा है, टेस्ट मैच में खेली हुई गेंद लाओ, उसको जलाकर मंजन बनाओ और उस मंजन से उसके दांत साफ कराओ, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ जाइए जाइए, कल दूसरे मरीज को लाइएगा।

0: है कि गंगा एक लाठी निकल जाएगी। इतने मरीज आ गए हैं, वाह वाह वाह वाह।
1: महीने की नहीं, 7 महीने की बाकी
0: है। ठीक है, 7 महीने की सही। हाँ मोनी बाबू आइए आइए आइए।
2: डॉक्टर साहब
0: जी जी,
2: ये मेरा बड़ा लड़का करोड़ी शंकर है। परसों जो बड़ा लड़का कौड़ी शंकर आया था ना, ये उसका जुड़वा भाई है।
0: ओ हो हो हो, अच्छा अच्छा। हाँ तो कौड़ी शंकर जी, हाँ तुम्हें क्या होता है बेटे?
2: अरे डॉक्टर मुझसे ये पूछते कि मुझे क्या नहीं होता है।
0: अच्छा,
2: 30-10 पिक्चरों में काम कर सकता हूँ पर बैठ जा।
0: मेरा नहीं,
2: उन प्रोड्यूसरों का जो मुझे चांस नहीं देते। तब आप ही बताइए डॉक्टर साहब, क्या आज के तमाम एक्टरों से कम खूबसूरत हूँ मैं?
0: अरे नहीं भाई, वाह वाह, अरे आप तो बहुत
2: खूबसूरत। छोड़िए ना डॉक्टर साहब, एक्टिंग देखिए आप मेरी, एक्टिंग
0: एक्टिंग
2: कॉमेडी ट्रेजेडी रोमांस मर्डर मिस्ट्री हर प्रकार की एक्टिंग कर सकता हूँ। चलिए अब पहले कहानी सुनिए। कैमरा लगा हुआ है और ट्रॉलीफॉर बंद है। कैमरा राजा बैठा हुआ है। रात के 12 बजे
0: के पास आकर कहता है,
2: हसीना तू अपनी पायल को क्यों बजा रही है? क्या तुझे पता नहीं टावर के नीचे साइलेंस फोन है? हीरो कहती है, मुझे तो याकूब जान कहते हैं। विलन चेंज, विलन पिस्तौल से फायर करता है, कैमरा गोली के साथ पैर माइक डिसॉल्व, चिड़िया जैसे बुलबुल महक रही है। और
0: अच्छा, और आगे क्या है?
2: पैसों का पहले फैसला कर लीजिए आपके साथ, बाकी कहानी बाद में सुनाऊंगा।
0: ओहो

0: निमोनिया
1: है। ये निमोनिया क्या होता है डॉक्टर साहब?
0: ये बिल्कुल निमोनिया की तरह होता है। इसका इलाज बहुत सीधा है। हर तीसरे दिन नाई को बुलाकर इसके सर पे उत्तरा करवाकर चमन गोटा कराइए, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
1: ठीक हो जाएगा ना? अच्छा तो मैं अब अपनी पत्नी को लाता हूँ। देश की वर्तमान हालत पर उसको बिचारी को दिन रात चिंता लगी रहती है, लेकिन वो इस वक्त तो आपके वेटिंग रूम में जरा मेकअप कर रही है, इसलिए पहले आप मुझे ही देख लीजिए।
0: आप तो अच्छे वाले दिखते हैं मोहिनी बाबू।
1: डॉक्टर साहब हर शायर अच्छा वाला दिखता है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि वो अच्छा होता है। डॉक्टर साहब मैं पहला शायर हूँ जिसका पहला ही गीत इतना हिट हो गया कि रेडियो से हफ्ते भर में 6-6 दफा बजता है।
0: ऐसा कौन सा गीत है जी इतना हिट के जो 6-6 दफे बजता है? अच्छा मोहन बाबू आप काम क्या करते हैं?
1: अजी डॉक्टर साहब काम काज करने की तो कोई जरूरत ही नहीं। पिताजी इतना पैसा छोड़ रहे हैं, इतना पैसा छोड़ रहे हैं कि कमाने तक की जरूरत नहीं।
0: ओहो तो आपके घर की सारी बीमारियों का कारण आपके पिताजी का छोड़ा हुआ पैसा है?
1: क्या बोलते हो?
0: जी हाँ, ये लवेरिया, गैम्ब्रेंसर, क्रिकेटिया और फिल्मोनिया, इन सब बीमारियों की जड़ घर में जरूरत से ज्यादा पैसा है। आपके पिताजी के छोड़े हुए सारे पैसे आप किसी स्कूल में दान दे दीजिए तो आपके घर की सारी बीमारी ठीक हो जाएगी, क्योंकि सारे घर वालों को कमाने के लिए मेहनत कर

0: रोज जोरों पर है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, ये पैसे जो स्कूल में दे दिए तो सारे बच्चों को बीमारी लग गई
0: तो किसी अस्पताल को दे दीजिए।
1: अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, अस्पताल में ही देना है तो क्यों ना मैं आप ही के अस्पताल में दे दूँ।

हृदय पर पुरुषोत्तम दाढ़े कर।

在这项目中，每场都有一些实际的参与，包括社会参与参加。भारतीय भारतीय कार्यक्रम कार्यक्रम को करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स

ज्यादा सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि

संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनी के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी। आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए

0: those border covers.
1: पाकिस्तान की लगी पूरी सीमा को अभी दूरी दी। इसी दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रावधान

0: सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अवैध बॉर्डर की हम सुरक्षा की भीड़ बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आए।
1: गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने मिलकर घुसपैठ रोकने का संकल्प लिया है बल्कि हर एक घुसपैठ की पहचान कर देश से बाहर करने का भी प्रण लिया है। गृहमंत्री ने कहा कि सरकार के सशक्त प्रयासों से नक्सलवाद की 5 दशक पुराने समस्या का प्रभावी अंत हुआ है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किया जा रहा है।

Parce que c'est vrai, je vais le faire dans mes signes.

मानसिक स्वास्थ्य पोषण और खेल गतिविधियों पर व्यापक रूप से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन बढ़ाकर 24 जून कर दी है। ये निर्णय वेबसाइट पर अधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया गया है। विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट UG परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में एक और प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीषा संजय हवलदार नीट UG परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थी और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त की गई थी। अब तक मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे, जो हमारे संवाददाता से।

मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री सैनी वांग, जापान के विदेश मंत्री कोशी मित्सुओ मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस प्रसंग और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री संत

या फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गाने की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी।

मजा असली नाम है विजय पाटिल। संगीत का शौक बचपन से ही था और वो पहले कॉलेज के जमाने में नागपुर में और फिर मुंबई में स्टेज के प्रोग्राम किया करते थे और उसमें बजाया करते थे। विजय पाटिल अकॉर्डियन बहुत अच्छा बजाते थे। फिर उन्होंने मुंबई में अपना एक तय बनाया और अपनी बनाई तर्जों को ही स्टेज पर प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। ऐसे ही एक कार्यक्रम में दर्शक थे दादा कौन के। वो इनसे इतना प्रभावित हुए कि अपनी फिल्म पांडु हवलदार का संगीत उन्हें सौंप डाला। उन्होंने ही विजय पाटिल का नाम भी बदला। वास्तव में राम और लक्ष्मण दो व्यक्ति थे पर उनमें से एक साथ ही राम की मृत्यु हो गई, लेकिन नाम दोनों का ही चलता रहा, यानी राम लक्ष्मण के नाम से ही संगीत चलता रहा।

लक्ष्मण का मानना था कि लोकप्रियता उसी गीत की होती है जिसे हर आम आदमी गुनगुना पाए। अपने संगीत में इस तत्व का उन्होंने हमेशा ही ख्याल रखा। राम लक्ष्मण की पहली सुपरहिट फिल्म रही राजश्री प्रोडक्शन द्वारा प्रस्तुत तराना, ये आई थी 1979 में। इस फिल्म के लगभग सभी गाने बहुत ही मशहूर हुए और लोगों ने इस संगीत को बहुत बहुत पसंद किया।

अपने सुरीले रस भरे गीतों से ऐसी ही संगीत वर्षा की। हम आपको बता दें कि गीतकार अशोक भोपाली के साथ राम लक्ष्मण ने भी सारी रचनाएं तैयार की, लेकिन उनमें से अधिकांश तो रिकॉर्ड भी नहीं हो सकी। राजश्री और दादा कोंडके के अलावा प्राणलाल मेहता और बी

लोगों के लिए राम लक्ष्मण के संगीत को अक्सर सुना, इसलिए राम लक्ष्मण को मौकों की कमी कभी भी नहीं रही। अगर बात करें एक चीज की तो बहुत सी अच्छी अच्छी फिल्में आई जिसमें राम लक्ष्मण का म्यूजिक उस समय बहुत बहुत सुना गया और सुनने वालों ने दर्शकों ने बहुत बहुत सराहा। कुछ फिल्मों के नाम याद कर लें जैसे उस्तादी उस्ताद थे, उस फिल्म के सभी गाने बहुत अच्छे थे और आंगन में तुलसी एक फिल्म थी उसके गाने भी लोगों ने बहुत पसंद किए और राजश्री प्रदर्शन की सुन सजना और सुन मेरी लैला के गाने भी लोगों ने बहुत पसंद किए और सबसे ज्यादा 80 के दशक में राम लक्ष्मण का जो गीत प्रचलित हुआ सुना गया सराहा गया और आज भी उसी तरह से सुना जाता है वो है हमसे बढ़कर कौन फिल्म का। ये फिल्म आई थी 1981 में और ये गाना

हिंदू हवलदार या माला जीवन ज्याला की अपार लोकप्रियता से प्रेरित होकर 1989 में राम लक्ष्मण ने मीनल राव के साथ स्वयं गाकर मराठी हिट का नाम से एक मराठी पॉप एल्बम भी निकाला था। वैसे राम लक्ष्मण अपनी निजी जिंदगी में बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति थे। हिंदी फिल्मों में असफल दौर भी उन्होंने देखा, पर राजश्री ने उनका साथ नहीं छोड़ा और 1989 की फिल्म मैंने प्यार किया इससे तो लोकप्रियता के कीर्तिमान स्थापित किए और संगीत तो लाजवाब था। राग पहाड़ी और शिवरंजनी की लोक धुनों का इस फिल्म में राम लक्ष्मण ने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। आधुनिक रिद्म के साथ पहाड़ी के लोक सुरों के सम्मिश्रण से प्रेरित दिल दीवाना बिन सजना के मानीना गाना बहुत बहुत पसंद किया गया और मैंने प्यार किया कि अभूतपूर्व सफलता ने राम लक्ष्मण को वर्षों बाद फिर से एक बार लोकप्रियता का

एक अपनापन, एक घरेलू पन सा होता था जिसे सुनने वाले बहुत बहुत पसंद करते थे। हम आपके हैं कौन उनकी ऐसी ही फिल्म थी जिसका एक एक गीत बहुत ही मशहूर हुआ। वैसे उनकी फिल्म सातवां आसमान भी एक उल्लेखनीय फिल्म है जिसके गाने बहुत सुने।

लक्ष्मण संगीत के प्रति बहुत सारी फिल्में हैं। इस कम समय में उनकी सारी फिल्मों के गानों की हम एक एक लाइन भी नहीं सुनवा सकते हैं, पर फिर भी हमने कुछ कोशिश की।

दोस्त यहाँ शर्मा हवा का एक झोंका पुराने खत खोल गया, भूले बिखरे सारे किस्से आंखों में घुल गया। अब जाग के गुजरेगी ये रात हमारी, करवटों में कितनी बातें तोल गया। भीगा हुआ सिरहाना कहता है फसाना, जो अब तक कहा ना हमने उसे आंखों से है बहाना।

कोई फिक्र है, हर सांस में तेरा ही बस तेरा जिक्र है। हेलिक कस्तूरी की तरह मेरे आगे पीछे भटकू मैं, खोजूं कि जाने किधर है। मिलता नहीं सारे बाजार ढूंढा, न जाने खोया कहां मेरा सबर है।

से लगाए बैठे हैं, हम खुद को भुलाए बैठे हैं। बन गए अजनबी तुम एक पल में, हम सब पकाए बैठे हैं। न कोई शिकवा किया न शिकायत की कोई, हाथ सीने में छिपाए बैठे हैं। दोष दे भी तो कैसे तुझको, हम खुद चोट किस्मत सिखाए बैठे हैं।

की तारीखियाँ जारी रहेंगी

छाया भी खिलता है चांद रोज मुस्कुराते हैं तारे हम उनसे क्या कहें जब तुम ही नहीं हमारे नाना भाई बहने हम तस्वुर में क्यों हो आते अब तुम कोई नहीं हमारे ये बातें तुम्हारी वो यादें तुम्हारी करते हैं लाख कोशिश बिखरी नहीं बिचारे पर तुम हो ही नहीं हमारे।

जला तो जल उठी ले रात। कोई तो पूछे मुझसे मेरे दिल के अब हालात। दिन पत्थर से सख्त लगते जैसे काली नागिन सी ये रात। अब शब्द में क्या सुनी तू मेरे बिखरे हुए जज्बात। आज कर एक वादा मेरे सामने तुम दिया है गम हमें कोई बात नहीं पर फिर ना करना ऐसा किसी के साथ।

किसी का नहीं, खुशी किसी की नहीं। न बहे आंसू मेरे तेरी आंखों से जब तक चोट तुझे लगी रही। इस भरी दुनिया में मेरी कोई मंजिल भी नहीं, रास्ता भी नहीं। क्या बताऊं मैं अपनी दास्तां तुझे, तू मेरा दोस्त भी नहीं, हम नवा भी नहीं। मेरा दर्द भी तेरा नहीं और तू मेरी दवा भी नहीं।

कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे विविध भारती की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा से। हम आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती की तरफ से बोल रहे हैं एफएम बैंक 102.8 मेगाहर्ट्ज पर राज्य के 11 बजते हैं। अब संपन्न होती है हमारी राष्ट्रीय सभा।